नदिया कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। वे रास्ते में आने वाले चट्टानों के बीच में भी अपना रास्ता बना लेती है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है, चलते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।

तो आइए इस नई सुबह से तीन बातें सीखें। फूलों से मुस्कुराना, दरिया से चलते रहना और सूरज से हर दिन नई शुरुआत करना। बीती रात चाहे जैसी रही हो, आज का दिन हमारे हाथ में है। उठिए, कदम बढ़ाइए और अपने आज को उम्मीद, मेहनत और मुस्कान से खूबसूरत बनाइए। इसी संदेश के साथ मैं आपसे लेती हूँ अनुमति। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ ही साथ सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। छोड़ के जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ ಪೂಜ್ಯ ಪಾದ ಶಿಷ್ಯ.
1: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ నిలయంలో సమయం 6 గంటలు కావస్తుంది. మరికొద్ది సేపట్లో న్యూస్ హెడ్లైన్స్ వింటారు.
2: మే దేవేంద్ర త్రిపాఠి. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे. दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे. भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे. हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है.
3: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है. साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी. बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है. वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा. एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण बना हुआ है. बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा

0: करेंगे सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य की जल आवश्यकताओं और शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय के 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में कल शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने जल संरक्षण से जुड़े उपाय अपनाने का आह्वान किया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्ष यान है और ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक महत्वपूर्ण उपाय है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा यह दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल उपकरण और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। 6 टन से अधिक बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। भोटे कोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। पहली ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi yesterday chaired the valedictory session of the 2-day National Departmental Summit on Water, organized by the Ministry of Jal Shakti. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. The Prime Minister appreciated the intensive 2-day deliberations and emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Belgium Bart De Wever will hold bilateral talks in New Delhi today. Both leaders will discuss the entire spectrum of bilateral relations as

0: अ मार्वलस मॉर्निंग डियर लिसनर्स, मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे रानी श्रीराम। यस, इट्स थर्सडे मॉर्निंग एंड हाँ, न्यू चैलेंजेस, न्यू टारगेट्स, अ लिटिल वर्क मोड में बिजी होंगे आप सभी लोगों पर। ये दिल तो मांगे मोर है कि नहीं, और ये तो सिर्फ और सिर्फ वीकेंड और एंटरटेनमेंट के इंतज़ार में रहता है। बट डोंट वरी एट ऑल, आज आपको डबल एंटरटेनमेंट पक्का मिलने वाला है, ट्रस्ट में। क्योंकि आज स्टूडियो में एक और आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी, एक और अंदाज महसूस करने को मिलेगी, क्योंकि मेरे साथ है आज जागृति। हाय जागृति।
1: हे रानी, हेलो डियर लिसनर्स, यस दिस इज जागृति। तो आज आवाज डबल और अंदाज भी डबल।
0: यस, और एंटरटेनमेंट सबसे ज्यादा डबल का डबल।
1: यस, और फॉर श्योर हमारा एक थर्सडे मॉर्निंग मूड होने वाले है फुल्ली रिफ्रेश्ड।
0: तो चलिए लेते हैं मस्ती की डुबकी और स्टार्ट करते हैं हमारी म्यूजिकल जर्नी को विद दिस फुट टैपिंग ट्रैक ओनली ऑन FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ
1: रंगीन।
2: And feeling like P. Diddy.
3: Hey, whatever,
2: grab
3: girl.
2: My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night,

0: वेलकम बैक डियर लिजनर्स। दोस्तों, प्लेट फुल है पर माइंड कन्फ्यूज। खाना तो हम सब खाते हैं, लेकिन क्या हमारे फूड में हमें एनर्जी मिल रही है या सिर्फ स्लम? आज हमारे आज जागृति हमें ये बताएंगे कि अपनी फेवरेट जो भी डिशेस है ना, उनको सैक्रिफिस किए बिना प्लेट में राइट बैलेंस कैसे लाए, और खासकर इन्फेंट्स की न्यूट्रिएंट्स की एबीसी से लेकर उनके डेली हेल्दी फूड हैबिट्स तक ढेर सारी बातें शेयर करने वाले हैं। तो जागृति, ये रहा आपका हॉट सीट। चलिए तो फिर,
1: गुड मॉर्निंग डियर लिजनर्स, यू आर लिसनिंग टू नमस्ते हेलो आदाब ऑन आकाशवाणी 101.9 रेनबो एफएम। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग which plays a crucial role at every stage of individual's life. This September, 1st nunchi 7th varaku, we are celebrating National Nutrition Week anamata. Yes, mana telugulo oka samath undandi, ade koti vidyalu kooti kosame kada. Aithe entha mandi ee samatulyamaina aaharam teeskuntunnaru? Ade andi nutritious food. Cheppalante a healthy mind resides in a healthy body. మనం తీసుకునే ఆహారాన్ని బట్టి మన భావిత్యం ఆధారపడి ఉంటుంది. సో వెల్ టాక్ మోర్ అబౌట్ ఇట్ ఆఫ్టర్ ఏ సాంగ్.

कि अमेरिका और यूक्रेन ऐसी व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं जिनसे यूक्रेन उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर सके। रूबियो ने यह बात कल एक साक्षात्कार में रूस के ईरान को समर्थन और यूक्रेन में जारी युद्ध पर चर्चा के दौरान कही। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन रूस के भीतर सैन्य और ऊर्जा से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त देखी गई। ताजा जानकारी के अनुसार सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 76,779 पर और निफ्टी 53 अंक बढ़कर 23,967 पर पहुंच गया। क्षेत्रीय स्तर पर रियल एस्टेट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पूंजीगत वस्तुएं प्रमुख लाभ कमाने वाले क्षेत्र रहे। बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Well, the time in the studio clock is 12 o'clock and 41 minutes. Well, अब बारी है आपके टैलेंट को स्पॉटलाइट देने की. ये एक ऐसी खबर जो आपके अंदर के फोटोग्राफर को बिल्कुल जगा देगी. अच्छा, एक बात बताइए, जब भी हम कोई भी खूबसूरत चीज़ देखते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? तुरंत फ़ोन निकालते हैं और कैप्चर कर लेते हैं, राइट? फ़ोटो लेने की हैबिट हम सब में होता है दोस्तों, पर अब वही आदत आपको दिला सकती है पूरे के पूरे 15,000 रुपीज़ तक का कैश प्राइस. जी हाँ, FTCCI यानी कि फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेकर आया है तेलंगाना थ्रू द लेंस 2026 फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट. Weather is the bustling street food, seven hidden waterfalls, ancient heritage, architecture or colorful local festivals. Kuch bhi ho, it is the time to show off the true spirit of Telangana to the world through your lens. Aur sabse achhi baat, entry bilkul free hai dost. First prize 15,000 rupees, second prize 10,500 rupees, third prize 7,500 rupees, and you know what, 5 logon ko milega 1,500 rupees ka consolation prizes. To bas camera uthaiye, apna best shot lijiye aur tayar ho jaiye. बाकी की रूल्स, रेगुलेशंस एंड सबमिशन डिटेल्स की जानकारी देती हूँ बस थोड़ी ही देर में. स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन FM रेनबो 101.9.

0: वेल फ्रेंड्स, एंटरटेनमेंट को थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वी हैव गॉट सम मोर मोटिवेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पैरा बैडमिंटन ग्राउंड. हियर यू गो दिस. या
1: Back after a small break, and we have one more hero here, Ranjit Gohil, and he works as railway mail service from Ahmedabad, and now he is participating in badminton and awarded silver medal too. And he is one more hero sitting. I am sitting beside him today to talk about his journey, and let's first congratulate him, and then let's talk about his journey too and kaisa chal raha hai. What made him to come into the sports, and all over the India now they are talking about such players who are physically challenged and giving challenges to the people who are perfectly physical. Hello sir.
2: Namaste, I am Ranjit Gohil from Gujarat, Ahmedabad RMS office. I am international player first. I am 96 world champion in swimming, and at this time इस बार मैं बैडमिंटन में फाइनल में हारा, लेकिन मेरा सेकंड नंबर. लेकिन हमें जिंदगी में बोलते हैं, जिंदगी की वही रीत है, हार के बाद जीत है. जिंदगी में जीतने का जज्बा होना चाहिए. तुम्हारा लगन, मिशन, जो ध्येय है, उसको आप लगे रहोगे तो कभी भी आप हार नहीं पाओगे. अंदर से जीते हो गया.
1: क्या बात है सर. हारना जीतना दो, सनराइज सनसेट की जैसा आपको.
2: जी मैडम, और मेरा ऐसा मानना है कि जो समाज है, जो पब्लिक हमें सोचती है बेचारा है ये फिजिकली हैंडीकेप, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ हम डिफरेंट लेवल है, हम रोल मॉडल है समाज के लिए. अगर हम कर सकते हैं तो जिसने भगवान ने उनको सब कुछ दिया है, तो वो कंप्लेन करते हैं या डिप्रेशन में जाते हैं या नशा करते हैं, उनको मेरे खास कहना है कि आप फिट इंडिया जो हमारा कैंपेन है उसके लिए हमको हमारी हेल्थ के भी रहना चाहिए, समाज को भी रहना चाहिए. तो हर इंसान को समाज के अंदर कुछ देना चाहिए. तो हम डिफरेंटली एबल पीपल इस समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं, हम किसी से कम नहीं है.
1: क्या बात है सर, हाउ ब्यूटीफुली यू आर मोटिवेटिंग. सर आपका इनिशियल डेज में और कभी ऐसा स्पोर्ट्स प्रैक्टिसिंग करने में कभी आपको ऐसे चैलेंजेस मिला और कोई तो भी आपको कहीं को करने की क्या बात है, आप करे तो ऐसा आप फर्स्ट आ जाता क्या, और आपको इतना इम्पोर्टेंस देते क्या कोई भी स्पोर्ट्स में, ऐसा कुछ वर्ड्स आप सुने इन योर ट्रैवलिंग ऑफ दिस द सिंस हाउ मेनी इयर्स एक्चुअली यू आर इनटू द स्पोर्ट्स. पहले वो तो बोल,
2: मैं स्पोर्ट्स में आया था मगर जब 30 साल पहले जब
1: FM Rainbow, Kirti is back again. Alpesh Sutaria from Ahmedabad, Gujarat, and he is Postal Department officer, and he is the gold medalist. अब इनसे बात करेंगे और इनके साथ और क्या कुछ interesting facts है और इसके practice के पीछे जो कुछ story है वो सब हम अब इनसे मिलके सब detail में उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या बोलते क्या बोल और क्या इन्फॉर्मेशन देते बोल के. सर हेलो, गुड आफ्टरनून.
3: नमस्ते सभी दर्शकों को, मेरा प्रणाम. और ऑल इंडिया एफएम से जो हमको सुन रहे हैं उनको हम सबको एक मैसेज देना चाहता हूं कि मेरा नाम अल्पेश सुतरिया है और मैं पैरा टेबल टेनिस इंटरनेशनल प्लेयर हूं और मेरी डिसेबिलिटी 80% है और मैं व्हीलचेयर के बिना नहीं चल सकता हूँ. लेकिन मेरी जो डिसेबिलिटी है उसको मैंने कभी मेरे उस पर नहीं आने दिया है और मैं नॉर्मल जो पर्सन होता है उसी सोच के माइंड से मैं अपना जीवन

0: उजागर कर रहा हूँ। और मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी है वो मतलब 15 साल से शुरू हुआ है। मेरा जो बच्चा है उनको मैं छोड़ने जाता था स्पोर्ट्स के लिए, उसको मैं देखता था और रोज़ उसको प्रैक्टिस में लेना और छोड़ना जाने के लिए जो स्टेडियम था वहाँ जाता था। तब मुझे पता लगा कि मैं जो डिसेबल्ड हूँ वैसे ही प्लेयर पैरा में खेल सकते हैं। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और आज मैं 7 कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और काफ़ी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कभी ब्रॉन्ज मेडल और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सभी जगह बहुत चैम्पियन खेल चुका हूँ। और मैं हमारी जो इंडिया की यंग जर्नेश जो बच्चे हैं उसको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके बच्चे अभी सभी घरों में एक कॉमन इश्यू है कि जो बच्चे हैं वो अपना सुबह उठते ही अपना मोबाइल हाथ में ले लेते हैं और पूरा दिन मोबाइल से मतलब बाहर नहीं निकलते हैं। तो मेरा एक ही मैसेज है कि आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को कम से कम 1 घंटा के लिए कोई भी एक्टिविटी मतलब फिजिकली एक्टिविटी में आप उसको मोटिवेट करो। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा और हमारा जो आने वाली जनरेशन है, हमारा जो मोदी साहब का जो ड्रीम है यंग इंडिया, तो वो उसी से हम आगे हमारा इंडिया बढ़ा पाएंगे। तो कम से कम 1 घंटा अपना जीवन का स्पोर्ट्स के लिए आप रखो।
1: इतना अच्छा बोला सर, आपका इन्फॉर्मेशन और आपका सजेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग है।
0: थैंक यू। और मतलब हमारे अभी जो बच्चे हैं वो थोड़ी चलते हैं, थोड़ा दौड़ते हैं तो थक जाते हैं, और हम इतनी विकलांगता होने के बावजूद व्हीलचेयर में पूरी गुजरात, भावनगर से लेके यहाँ हैदराबाद तक ट्रैवल करते हैं और इंटरनेशनल में भी जाते हैं, तो भी हम इतना जुनून और हमारा जो मोटिवेशन है वो सब समाज को दिखाते हैं कि देखो हमारी डिसेबिलिटी इतनी है तो ये हम सब कर सकते हैं। तो आप नॉर्मल है, आपके पास 2 हाथ है, पैर है, आँख है, कान है, तो आप ये मत सोचो कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि हम ये जो जिसके पास कोई भी अंग नहीं है तो वो भी इतना कर सकता है तो हम भी कुछ करेंगे। तो एक ऐसा मतलब आप जीवन में एक वो बनाइए कि 1 घंटा आप स्पोर्ट्स के लिए निकालें।
1: सर आपको एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाते?
0: नहीं, मैं कभी,
1: उसका रीजन क्या है?
0: रीज़न ये है कि मेरा जो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस का शेड्यूल है वो बहुत टाइट है। मैं पूरे दिन में 6 से 7 घंटे कंटिन्यू प्रैक्टिस करता हूँ, उसके साथ मैं जॉब करता हूँ, उसके साथ मेरी फैमिली है, तो वो सब को मैनेज करके मैं अपना पूरा दिनचर्या है वो रहता है। तो उससे मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं थोड़ा थक गया या मुझे नर्वस हो गया, तो ऐसा मुझे कभी नहीं लग रहा है कि मैं कभी थका हूं।
1: बहुत अच्छा। तो कभी भी ये डिप्रेशन हमारे नजदीक भी नहीं आना बोले तो हम बहुत फिट रहना है और कभी भी बिजी रहना है, वही है आपकी आंसर?
0: वही है कि आप जो आपके पास भगवान ने दिया है उसी को आप उसमें से क्या आप बेस्ट कर सकते हैं वही सोचो। सामने वाले का मत सोचो कि उनके पास ये है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपना खुद का देखो कि मेरे पास क्या है, उसी में से आप रास्ता निकालो और उसी से आप आगे बढ़ो।
2: నేహా, ఈ మధ్య నువ్వు చాలా రిలాక్స్డ్ గా కనిపిస్తున్నావు. ఎల్ఐసి యొక్క బీమా లక్ష్మీ ప్లాన్ తీసుకున్నాను. చిన్న మొత్తాల పొదుపు పెద్ద రాబడిగా మారుతుంది. మనకి ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ కూడా ఉంటుంది. గ్యారంటీడ్ అడిషన్స్, 3 ఆకర్షణీయమైన ఆప్షన్స్ తో అడిషనల్ సర్వైవల్ బెనిఫిట్, ఇందులో ఆటో కవర్ కూడా ఉంది. ఈ ప్లాన్ ప్రత్యేకంగా మహిళల కోసమే. ఎల్ఐసి హర్ పల్ ఆప్కే సాత్.
3: రాజు, రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటర్ నమోదు చేసిన దానికి డిక్లరేషన్ ఫామ్ తో పాటు ఫామ్ 6, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి సెప్టెంబర్ 16 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov

0: వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఏఆర్ఓ ఏఈఆర్ఓ లేదా బిఎల్ఓ కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
1: దివ్యాంగజన్ క్యా ఖేల్ పాయంగే ఉన్కు దేఖ్నే కా నజరియా ఠీక్ నహీ థా లేకిన్ హమారే మే ఏక్ జీత్ థీ, ఏక్ జజ్బా థా కి హమే కుచ్ కర్నా హై. मुझे याद है जब मैं स्विमिंग करता था तो लोग हमें देख के हंसते थे, लेकिन जब मैं वर्ल्ड चैंपियन हुआ तो वही लोग मुझे सलाम मार रहे थे. अच्छा, क्योंकि उनका नजर तो मेरा नाम रंजीत, जीतना. तो हमेशा उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मुझे अच्छे कोचिस मिले. तो कोच की वजह से और मेरे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट के अंदर मैं आरएमएस में हूँ, तो मुझे 2 घंटे का रिलैक्सेशन मिलता है प्रैक्टिस के लिए. वो मुझे काम में लगा. तो हम जॉब करने के बाद प्रैक्टिस करते, अगर हमें प्रैक्टिस नहीं किया होता शायद मुझे मेडल नहीं मिलते. तो मेरे डिपार्टमेंट के जो भी ये रूल्स है और मेरे डिपार्टमेंट के अंदर जो आला अफसर है, मेरा स्टाफ है, मेरे ऑफिसर, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया. लेकिन जब मेरे पास मेडल नहीं थे तब मैं थोड़ा सा डर रहा था. लेकिन जब मैं वर्ल्ड चैम्पियन हुआ, उसके बाद मैं लंदन में गया, उसके बाद मेरे मेडल लगातार लगते. अभी फिलहाल इस वक्त मेरी एज 59 है, मेरे पास 185 मेडल्स है, 85 गोल्ड मेडल है और 20 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल. आई एम मल्टी टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन.
2: क्या बात है सर, यू नॉट इवन लुकिंग लाइक 59 एक्चुअली, यू आर सो यंग.
1: ये राज है स्विमिंग का. हम एवरीडे, हम हमारी लाइफ के अंदर हमेशा एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, हम कोई नशा नहीं करते. हमारा खाने का जो भी शेड्यूल अच्छा रहता है उसकी वजह से हम फिट रहते हैं. तो इसीलिए हमारी एज पता नहीं लगता. लेकिन मल्टी टैलेंटेड स्पोर्ट्स बनने के लिए हमारे खुराक में हमारे को हर जगह पे पॉजिटिव रहना पड़ता है. मैं हमेशा बोलता हूँ मंजिल उन्हें को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती. हमारा हौसला बुलंद है, हमारा लक्ष्य एकदम परफेक्ट है. अर्जुन की तरह एक लक्ष्य में चलते और हम टारगेट बनाते हैं. हमें इतना घंटा प्रैक्टिस करना है, हमें गोल्ड मेडल लाना है और लाने के लिए हमें हर मेहनत करने के लिए ऑटोमेटिक हमारा शेड्यूल बन जाता है. तो इसीलिए हमारे को मेडल मिलता है. मुझे 96 में राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला हुआ है. तो उस अवार्ड मिलने के बाद भी मुझे समाज में कई जगह पर हमें VIP गेस्ट बुलाया, मीडिया में आया, सब NGO बुला रहे थे. तो हमें अच्छा लग रहा है, एंकरेजमेंट मिलता है. तो हमारे में एक बदलाव आया. अब हम एक समाज के रोल मॉडल हैं और वो समाज हमको देख के सीखना चाहिए कि हमें डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, हमें नशा नहीं करना चाहिए, हमें फिट रहना चाहिए. और आज जब पहले कुछ 10-15 साल पहले दिव्यांगजन का इतना वैल्यू नहीं था स्पोर्ट्स में, लेकिन जब ओलंपिक के अंदर हमारे मेडल आते गए, एबल से डिसेबिलिटी के मेडल्स बढ़ गए, तब हमारी इज्जत बढ़ गई. उसके बाद हमारे भारत देश के अंदर जब मेडल आए तो हर NGO ने सपोर्ट किया, CSR फंडिंग मिलना चाहिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ONGC उन्होंने स्पॉन्सर किया. तो अब हमारे लगातार इंडिया के अंदर मेडल बढ़ रहा है, सपोर्ट मिल रहा है. तो अब हम समाज के अंदर एक ऐसे उभर के आए हैं कि हम किसी से कम नहीं है.
2: सर वो तो सही, आप किसी से कम नहीं. और ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेडल आए तो और आपका इंटरेस्ट और आपका इंथुजियाज्म, आपका एनर्जी बढ़ते जा रहा. और कभी आपको मेडल नहीं आए तो आप इतना नुकसान हो के और प्रैक्टिस करना बोल के आपका इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्पोर्ट्स कंटिन्यू किया, वो तो कितनी अच्छी बात है. वो मुझे तो बहुत पसंद लगा.
1: नहीं, यही होता है जब हम हारते ना तो हमारे में एक जुनून होता है, हमारी दिमाग की बैटरी चार्ज होती है. मुझे तो ऐसा कि कोई मुझे तकलीफ देना चाहिए, मुझसे कोई नेगेटिव बात करना चाहिए, मुझे गिराने की कोशिश करने, तब हम डबल चार्ज होते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं. और उसका अचीवमेंट जब होता है ना, उसकी मजा, उसका चार्म कुछ अलग होता है. क्योंकि हम एक जवाब देते हैं, उनकी सोच को बदल देते हैं कि आपकी सोच गलत थी, हम सही थे, आप सोच बदलो, हमारी हमारे बारे में अच्छा सोचो, हमें सपोर्ट करो, हमें अप्रिशिएशन करो और हम आगे बढ़ेंगे. हमें नेगेटिव बात नहीं बोलो, हमारा देखने का नज़रिया बदलो. हम भगवान ने जो भी दिया है हम एक्सेप्टेड, लेकिन हमने हमारे आप को कभी, मैंने हमारे दिमाग में, मैंने मेरे आप को कभी दिव्यांग नहीं समझा. दिव्यांग वो है जो समाज के लिए काम नहीं करता, देश के लिए, देश के कोई भी इवेंट हो, कोई भी काम हो, उसके अंदर सपोर्ट करना चाहिए. हम आए हैं, इस दुनिया से जाना है, जाने से पहले कुछ मैसेज दे के जाना है. हम जिंदा रहना चाहते हैं, है तो भी, नहीं है तो भी, हर दिलों के अंदर राज करेंगे।

0: और एक मिसाल कायम करेंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं, सिर्फ सोच बदलो, तुम्हारा जज्बा होना चाहिए।
1: कितना अच्छा बोला सर आप। तो भगवान जो दिया जो दिया,
0: हैप्पी चैलेंज।
1: तो इससे अपन क्या कर सकते हैं और क्या करके दिखा सकते हैं, वो आपने कर रहे अभी।
0: बस हमने किया तो जो पब्लिक सुनने वाली जो है, मैं उनको विनती करता हूँ कि आप भी करो। आप जो लेवल पे है, सिर्फ सोच बड़ी रखो, आपकी एनर्जी हमेशा रखो। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जितनी तकलीफ पड़ेगी इतना तुम आगे बढ़ोगे। अगर आपको तकलीफ जीवन में नहीं आएंगे तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, और ना आपका कोई लक्ष्य होगा, ना कोई आपका ड्रीम बनेगा। ड्रीम तभी बोलता है कि जब कोई तकलीफ देता है।
1: व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड। देख, तो तकलीफ से ही अपन आगे बढ़ सकते और कुछ भी अचीव कर सकते, कुछ जीत सकते। हारने में क्या है, कुछ भी ना करके घर में बैठे तो हार जा सकते अपन।
0: बस बस, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।

0: नंदन वंदन अभिनंदन। संदेश टू सोल्जर्स की आज के इस अंक में मैं गीतिका उनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। हर बार की तरह हमारा आज का ये कार्यक्रम आत्मिक होने वाला है, क्यों कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसे ही एक मेहमान जिन्होंने 40 वर्षों तक सेनाओं के जरिए सेना में अपनी सर्विसेज देने के बाद आज सेवानिवृत्त होने पर भी अपना कार्य करना नहीं छोड़ा। अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपने कर्म से उन्होंने अपने लिए एक नए आयाम ढूंढे हैं। उनके नए आयाम क्या हैं ये बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार। अति विशिष्ट सेवा मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया है और ये एक्स डायरेक्टर जनरल वर्क्स इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज एक ऐसे ऑफिसर हमारे साथ हैं जिन्होंने हमारी सेना को सशक्त किया है। अक्सर हम यही कहते हैं कि सेना का अर्थ है हमारे तमाम वो फौजी जो मैदाने जंग में जाकर लड़ते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे ये फौजी सेना को सशक्त करते हैं, अपने साथियों को सशक्त करते हैं? अब आप पूछेंगे कैसे, वो ऐसे कि हमारे आज के जो गेस्ट है, मेहमान है, ये एक सोल्जर होने के साथ साथ एक मिलिट्री इंजीनियर भी है और इन्होंने सेना में रहते हुए असीम योगदान दिए हैं। तो आइए सर्वप्रथम सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान मेजर जनरल अशोक कुमार जी का। अशोक जी आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर।
0: जी जब भी हमारे इस कार्यक्रम में आप जैसी हस्तियां शिरकत करती हैं पहुंचती हैं तो सबसे पहला सवाल मेरी ओर से यही रहता है कि वो कौन सी कैसी बात थी, कौन सी कैसी चाह थी जो आपको भारतीय सेनाओं की तरफ ले गई, क्या वो बात थी जिसने आपको आकर्षित किया कि अगर जाना है तो बस सेना में ही जाना है और सेना के माध्यम से ही अपने देश प्रेम को स्थापित करना है?
1: सो गीतिका, वो दौर ऐसा था जब हमारे पास विकल्प कुछ थे भी और कुछ नहीं भी थे, पर सब में जो परम विकल्प था वो फौज ज्वाइन करना था। और वह इसलिए भी था कि हमारे पिताजी स्वयं फौज में थे, वो इंडियन नेवी में थे और उनके साथ में हम कई वर्षों तक रहे, अलग अलग जगहों पर हमने गए और दिल में एक ऐसी उम्मीद थी कि हम भी उनके पद्म चिन्हों पर चलेंगे और फौज में जाने की कोशिश करेंगे, जो कि कामयाब हुआ।
0: वाह क्या बात है। अक्सर ये देखा जाता है जब वो बच्चे जिनकी परवरिश फौजी माहौल में होती है तो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में जिंदगी जीते हैं, तो क्या

0: स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था जो बचपन से ही आपको रास आया?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे पिताजी हमें बचपन से ही उन्होंने जो सिखलाई करी, वो चाहते थे कि जैसा वो अपने नियमित रूप में करते हैं वैसा ही हम सब करें। हमने कोशिश की कि हम उनके पदचिन्हों पर चल पड़ें और उनके जैसे काफी चीजें सीखें। कुछ हमने सीखा, कुछ आज भी हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं।
0: वाह क्या बात है, तो सीखने सिखाने का सिलसिला बरकरार है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि भले ही घर में माहौल स्ट्रिक्ट रहा हो, तो इसके बीच शैतानियां ना हुई हो ऐसा भी मुमकिन नहीं?
1: स्ट्रिक्ट माहौल, आई थिंक उन दिनों में जो तरीके थे काम करने के वो इस तरह के थे कि जब तक बच्चे को एक खुराक ना मिल जाती तो वो
0: जी
1: आगे नहीं बढ़ते थे। लेकिन आज का जमाना शायद बदल चुका है, लेकिन हम उन चीजों से यूज्ड टू हो चुके थे और हम अपने तरीके से, हम अपने दोस्तों के साथ में शैतानियां भी करते थे, खेलकूद भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे और अपने काम में कोशिश की कि हम वो अचीव कर पाए जो हम चाहते थे। और फौज का जो हमारा एक लक्ष्य था वो हमने उन सब चीजों में रहते हुए हासिल किया।
0: जी ऐसा भी दौर आता होगा कि पिताजी लंबे समय तक कहीं बाहर रहते हों, टूर्स पे रहते हों, अपने मिशन्स पर रहते हों, तो उस बीच उनके साथ संपर्क ना हो पाता हो, तो ऐसे में किसको अपनी बात कहते और कैसे घर का सामंजस्य माताजी बनाती?
1: ये सब चीजें आई थिंक फौज में जब आप रहते हैं, आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स, सो आप इन सब चीजों से वाकिफ हो जाते हैं और आफ्टर सम टाइम जिंदगी का एक रूप जो है वो अपने आप में एक तरीके से ढलने लग जाता है। जब आपको मालूम होता है कि आपके पिताजी जब आपके साथ में नहीं है तो आपने क्या क्या कार्य करने हैं, मदर के साथ में कैसे डील करना है, अपने जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ में कैसे करना है और अपनी पढ़ाई का ध्यान कैसे रखना है। उन दिनों में मोबाइल्स नहीं होते थे, कम्युनिकेशन के जरिए चिट्ठियों के द्वारा हुए थे, तो उनका एक अलग खुशी थी उसमें, एक अलग तरीका था और हमें मालूम होता था कि कब पिताजी आएंगे और कब हमारी खिंचाई होगी। लेकिन साथ ही साथ हम अपना काम करते रहते थे और वो सारी जिम्मेवारियां भी निभाते थे जो आज कम देखने को मिलती हैं।
0: एक बच्चे के लिए उसके पिता उसके रोल मॉडल होते हैं, तो जब कभी आपने अपने पिता को यूनिफॉर्म में देखा, उस वक्त क्या फीलिंग आई, उस वक्त क्या सोचा आपने?
1: सो यूनिफॉर्म में तो जब से हम पैदा हुए और हमारी हम एक उस स्टेज में आए जब, तो हमने अपने पिताजी को हमेशा यूनिफॉर्म में देखा और अच्छा लगता था। वो यूनिफॉर्म सफेद रंग की होती थी और वो नेवी में कार्यरत थे, सो काफी अच्छी अच्छी जगहों पर उन्होंने पोस्टिंग करी। तो हमारा भी इरादा था कि हम भी फौज में जाएं। हम चाहते थे कि हम एयरफोर्स में जा पाएं, लेकिन हम फाइनली आर्मी में गए और आज हमें कोई शक नहीं है कि जो भी हमने आर्मी से सीखा वो काबिले तारीफ है और हमारे जीवन की जो कार्यशैली है वो उससे हमने बहुत कुछ सीख कर आज हम एक सशक्त इंसान बने हैं। इसका मैं धन्यवाद अपने पेरेंट्स को, अपने पिताजी को, अपनी माँ को जो आज हमारे बीच में नहीं है, पिताजी हैं, तो उन सबको देता हूँ जिनके वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं।
0: जी निश्चित रूप से। वो पल कौन सा पल था, कैसा पल था और कब घटित हुआ जब आपने आर्मी का एग्जाम क्लियर किया? क्या थी वो पूरी प्रक्रिया जिसके तहत आप एक ऑफिसर बने इंडियन आर्मी में?
1: उन दिनों में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे और अमूमन फौजी बच्चे ज्यादातर ऐसे ही स्कूलों में पढ़ते थे और उनका काफी नाम हुआ करता था और काफी अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी। तो हमारी ये जिद्दोजहद थी कि हम पहला हमारा जो लक्ष्य होगा वो फौज का होगा। सो पहला जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उन दिनों में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसको हम एनडीए कहते हैं, उसके एग्जाम हुआ करते थे। वो उन दिनों में 11वीं के बाद होते थे और मुझे याद है कि हम ग्रुप बना के सारे दोस्त एक साथ पढ़ा लिखा करते थे और कोशिश करते थे कि हम उसको निकल पाएं। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने अपना जो इम्तिहान था वो पहली दफा में क्लियर कर लिया था, लेकिन एनडीए के दौरान में कुछ ऐसे इश्यूज आए कि हम ज्वाइन नहीं कर पाए। वो कसक जो है दिल में लगी रही और ये रहा कि हमें फौज में ही जाना है। तो हमने 3 साल और मशक्कत की, ग्रेजुएशन की, बम्बई यूनिवर्सिटी से बीएससी में उत्तीर्ण हुए और फिर दोबारा से हमने उसी सेंटर में उसी उम्मीद के साथ फिर एक बार जूझे और फिर पहली दफा में हमने एग्जाम क्लियर किया। और एयरफोर्स में जाने की ख्वाहिश तो थी, लेकिन कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से हम आर्मी में आ गए।
0: जी
1: सो एंड आई हैव नो रिग्रेट्स, मुझे कोई ऐसी शिकायत या गिला नहीं है। लेकिन जो सफर रहा बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत लोगों

0: से मुलाकात हुई, हमने जिंदगी के कई दायरे, कई पहलू ऐसे सीखे जो आज तक हमारे साथ हैं, और उम्मीद है कि हम अपने बच्चों में भी ये चीजें डालने की कोशिश करते हैं।
1: जी, तो सन 1986 में आपने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया,
0: हाँ
1: सीडीएस
0: जी,
1: एग्जाम,
0: जी
1: और
0: हाँ,
1: फिर 1987 में आप कमीशन्ड हुए इंडियन आर्मी में।
0: हाँ जी।
1: जी, तो फिर पहली पोस्टिंग कहाँ मिली, कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन किया आपने?
0: जब हमने ट्रेनिंग के दौरान IMS से निकले तो कुछ दिनों के लिए हम रुड़की में एक छोटा ट्रेनिंग कैप्सूल होता है, जिसको करने के बाद में हमारी पहली पोस्टिंग सिक्किम में आई, जो कि आपने सुना होगा नथुला पोस्ट है, जो चाइना के अक्रॉस है। सो हमारी यूनिट की एक टुकड़ी वहां पर तैनात थी, और हम जैसे ही यूनिट पहुंचे कुछ दिन, कैलिमपोंग एक जगह है जहां पर रहने के बाद में तकरीबन 15-20 दिन के बाद हमको वहां भेज दिया गया, और ऑलमोस्ट 2 साल हम वहां पर रहे, और जो कुछ वो सीखने को मिला उस दौरान में वो काफी काबिले तारीफ था। हमने अपने अपने आप भी काफी कुछ सीखा, लेकिन जो हमारे सरदार साहिबान और हमारे जवान और हमारे जो अफसरान थे, उनके जरिए हमने काफी कुछ सीख ली जो आज तक हमारे साथ में बरकरार है।
1: वाह, क्या बात है। एक बात और जानना चाहती हूँ आपसे, वैसे तो भारतीय जो सेना है, जो ट्रेनिंग्स आपको दी जाती है, टफेस्ट ट्रेनिंग्स कहा जाता है वर्ल्ड में, लेकिन ट्रेनिंग्स के बाद भी जब आप एक ऑफिसर बन जाते हैं, आपकी जिम्मेदारियां आपको दी जाती हैं, आप पर कार्यभार दिया जाता है, आपको डिसीजन लेने होते हैं, कमांड सुनने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, तो वो मंजर कैसा था? क्या आपकी कल्पनाओं से एकदम अलग था, या जो आप सोच के गए थे बिल्कुल वैसा था?
0: आपका जो सोचने का तरीका होता है वो आपकी एक अपनी तरतीब होती है, कि आप सोचते हैं कि जिंदगी की चीजें इस तरह से चलेंगे, लेकिन जब आप जमीन पर हकीकत में देखते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं होती हैं, कई चीजें उसके विपरीत भी होती हैं, और आप देखते हैं कि जिंदगी के मायने कुछ और भी हैं, और उसमें जो सीखने सिखाने वाले लोग हैं, आपके जो सीनियर अफसरान हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो आपकी टुकड़ी के जवान हैं, जो JCOs हैं, जो तजुर्बेकार हैं, उनके जरिए आप बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं जो शायद आपको अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में प्रैक्टिकली शायद नहीं सिखाया जाता है। वो जब आप जमीनी हकीकत के साथ जुड़ते हैं तो आप वो एक अलग ही सीख होती है, और वो आपके साथ जिंदगी भर बरकरार रहती है। तो उसके लिए मैं अपने जवानों का और अपने जो सरदार थे उनका काफी शुक्रगुजार हूँ, और उनके साथ में मैं आज भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जब भी हमें मौका मिलता है हम उनसे मिलते हैं।
1: जी, यही खास बात है हमारी भारतीय सेना की कि वो हर मंजर के लिए हमेशा तैयार रहती है, और अपने सैनिकों को, सिपाहियों को, ऑफिसर्स को इसी तरह से तैयार करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी क्यों ना हो, तुम्हें डटे रहना है, टिके रहना है, और हर जंग में फतेह हासिल करनी है।
2: कांधे पे सूरज

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका ओनियाल और आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल अशोक कुमार। हम कहते हैं ये कि हम में वो जज्बा है, हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, हम हर जंग में फतेह हासिल कर सकते हैं, पर सच मानिए ये जज्बा भी हमें हमारे सिपाहियों, हमारे सोल्जर्स, हमारी भारतीय सेना से मिलता है और जिसकी जीती जाती मिसाल आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है मेजर जनरल अशोक कुमार। जी अशोक जी, आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं कि जब हम सर्विसेज ज्वाइन करते हैं, खासतौर पर जब आपने सर्विसेज ज्वाइन की, उससे पहले ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग के बाद आपको एक ऑफिसर नियुक्त किया गया, आपको पोस्टिंग दी गई, लेकिन इंजीनियरिंग, क्योंकि मिलिट्री इंजीनियर आप रहे हैं, तो इंजीनियरिंग ही इस विभाग को ही आपने चुना या फोर्सेज ने आपके लिए इस विभाग को चुना, किस तरह थी ये प्रक्रिया?
1: ट्रेनिंग के दौरान आपकी क्वालिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए आपको मौका दिया जाता है कि आप किस संस्था में, या इन्फेंट्री में, आर्टिलरी में, या इंजीनियर्स में जाना चाहते हैं। तो उनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं। अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो आप जो तकनीकी ब्रांचेस हैं जिसमें इंजीनियर्स, ईएमई, सिग्नल्स आते हैं, इनमें आप जा सकते हैं। बकायदा कि आपने बीएससी बैकग्राउंड किया हो और आपके पास वो डिग्री हासिल हो। हमारे पास में विकल्प था कि हम इंजीनियर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। उन दिनों में इसमें काफ़ी कंपटीशन था, लोग काफ़ी जानना चाहते थे। तो हमारे कोर्स के दौरान हमारे 28 वैकेंसियां थी और हम तकरीबन 200 लोग थे जिन्होंने इंजीनियर्स में ऑप्ट किया था। तो आपकी मेहनत के अलावा आपकी किस्मत भी थी, वो बैचेस में बनाते थे और हर बैच में 2 से 3 वैकेंसीज आती थी। सो आई वॉज लकी कि हमें जो मुझे जरूरत चाहिए था वो मिला एंड खुशी का माहौल था जब आपने वॉर ऑफ इंजीनियर्स में ज्वाइन किया। ये एक ऐसा कोर है जिसमें आप लड़ाई के दौरान में सबसे पहले दुश्मन लड़ाई में जाते हैं और लड़ाई खत्म होने के बाद में सबसे आखिर में आप पूरा कार्य करके बाहर निकलते हैं। सो दिस इज एन एडवांटेज एंड इसमें आपको पढ़ाई लिखाई काफी करनी पड़ती है, जो कि एक आम धारणा है कि फौज में जब बंदा जाता है तो इतनी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। बट एज इंजीनियर्स हमें जरूरत है कि हम इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करें और अगर आपकी चेष्टा है तो आप आगे उसको फर्दर एग्जाम देके आप अपने मास्टर्स भी कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान किया। कहना कि फौज में जाने के बाद पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई काफी है और आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कितना करना चाहते हैं, बिकॉज इनका उपयोग लड़ाई के दौरान भी आता है।
0: जी, पढ़ाई का सिलसिला तो मुझे लगता है आपका बरकरार रहा, जैसे आपने खुद कहा आपने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बाद एमटेक भी किया, एमफिल किया आपने मैनेजमेंट स्टडीज।
1: जी हाँ,
0: ये सिलसिला जो था, ये सिलसिला फौज में रहते रहते बरकरार रहा।
1: ये सिलसिला फौज में रहते रहते बरकरार रहा। कई फौज आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपने जद्दोजहद करके और अपने आप को उत्तीर्ण हासिल करना होता है। सबको मौका जरूर मिलता है लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है। तो आई वॉज वन ऑफ दोज लकी वंस हु कुड मैनेज टू डू दीज कोर्सेज एंड पढ़ाई भी कर पाए और जिससे हमारे को अच्छी ख्याति हासिल हुई और हमारे प्रमोशंस में भी इसके काफी काम आए।
0: बहुत खूब। अब बात की जाए मिलिट्री इंजीनियर की, मिलिट्री इंजीनियरिंग की, अक्सर हम यही सोचते हैं कि फौज का अर्थ है हमारे वो सेनानी, हमारे वीर, हमारे सैनिक जो मैदान जंग में जाते हैं, जंग लड़ते हैं और हमें कहीं ना कहीं सुरक्षित करते हैं। लेकिन जब भारतीय फौज की

0: जाती है. और जब हम बात करते हैं मिलिट्री इंजीनियर्स की, तो इंजीनियर्स हमारी सेनाओं को कैसे सशक्त करता है, क्या भूमिका रहती है इंजीनियर्स, मिलिट्री इंजीनियर्स की?
1: आज का दौर आपने देखा होगा, जब प्रेजेंट सिनेरियो में काफ़ी लड़ाइयाँ देश के बाहर में हो रही हैं और जिस हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं, तो तकनीकी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है. इसी प्रकार हमारे फोर्सेस में भी इंजीनियरिंग का होना बहुत ही अहमियत रखता है. और कहते हैं कि कोर ऑफ इंजीनियर्स का मायने है कि जब आप लड़ाई के दौरान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, आप अपने फोर्सेस को मोबिलिटी प्रदान करते हैं और दुश्मन को मोबिलिटी डिनाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका जो अचीवेबल टारगेट है वो अचीव हो और दुश्मन को आपने टारगेट को अचीव करने में आप बाधा बने. सो आपने चाहे सुरंगें बिछानी हैं, चाहे आपने ब्रिजेस बनाने हैं, चाहे आपने नौका के जरिए नदी को पार करवाना है, उसमें बड़ा बड़ा जो असला है, सामान है, टैंक्स हैं, ये सब पार कराने और लाने और ले जाने की जिम्मेवारी कोर ऑफ इंजीनियर्स को दी जाती है. साथ ही साथ जब दुश्मन दूसरी तरफ से हमला करता है, तो उसमें मायने या सुरंग लगाने का कार्य भी इंजीनियर्स को दिया जाता है, जो कि हम अपनी सूझबूझ और हमारे सिखलाई के तरीके से करते हैं. इसी प्रकार जब दुश्मन की जो मोर्चा है उसको हम हासिल कर लेते हैं, तो वहां पर हम रिकूप करके दोबारा से उसको एस्टैब्लिश करते हैं और जो हमारी टुकड़ियां हैं पीछे, उनको सामने लाके फिर लड़ाई को और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं. उसके अलावा जब लड़ाई लगती है तो हम एयरफोर्स के साथ में भी मदद करते हैं. जब हमारे हवाई अड्डे होते हैं उनको बनाने में, या कोई नुकसान हो गया है उसको दोबारा से रिहैबिलिटेट करने का काम भी हमारा है. सिमिलरली नेवी के जहाजों के लिए जो युद्ध पोत वगैरह हैं, उसमें जो चीज़ें बनती हैं या कोई चीज़ बिगड़ गई है उसको भी ठीक करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार में लाने का और लड़ाई के लिए सशक्त बनाने का कार्य भी हम लोगों का होता है. सो काफ़ी काम होते हैं जो कि तभी हासिल हो सकते हैं जब आपने पीस दौरान में अच्छी पढ़ाई की हो, उसको अमल में लाए हों और देश के सुरक्षा कार्यों में उसकी आपने एक नीति बनाई है, जिसके कारण हम वी अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव.
0: जी, तो ना केवल भारतीय सेना को सशक्त करती है मिलिट्री इंजीनियर्स, बल्कि आम जनमानस के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही सार्थक साबित होती है. यू आर हेल्पफुल टू द एंटायर नेशन इन डिफरेंट वेज. तो किन किन तरीकों से हमारे मिलिट्री इंजीनियर्स जो है देश के लिए,
1: जब कहीं देश पर आपदा आती है, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं तूफान आ गया, कहीं लैंडस्लाइड्स आ गए, तो उसमें जब रेस्क्यू मिशन होते हैं तो उसमें भी हमारे इंजीनियर्स का काफी काम होता है. जब हमें दुर्गम इलाकों में हम जाते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, हॉस्पिटल्स में उनको लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी हम भारत की जनता के प्रति या बाहर के देशों में हम जो भी फैसिलिटीज पहुंचा सकें वो टाइम से दें, ताकि इंसान को इंसान की जो जरूरत महसूस होनी चाहिए उसमें हम एक भागीदार बन सकें.
0: जी, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता होगा हमारे ऑफिसर्स के लिए कि वो निरंतर पढ़ते रहे, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान है इंजीनियर्स को इंजीनियर्स बनाने में. ऐसे में मिलिट्री इंजीनियर्स भी उनकी लगातार अपने सर्विसेज दौरान ट्रेनिंग चलती होंगी, ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनकर वो अपने आप को सशक्त करते हैं कहीं ना कहीं कि क्या कुछ नया चल रहा है, क्या कुछ नया किया जा सकता है. तो आपके साथ भी लगातार ट्रेनिंग्स का सिलसिला जारी रहा?
1: ये सिलसिला हमेशा जारी रहता है, बिकॉज देश में इतने विकल्प हैं कि आप सोचते हैं कि आप ही करने हैं. आपने लड़ाई है अपने एक दुश्मन से जीतनी है और वो भी अपने तरफ अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी तकनीक के द्वारा कोशिश में रहता है कि आपसे अच्छा आ सके. जब तक आप उसकी सोच को विफल नहीं कर पाएंगे, और वो होगा जब तकनीक में आप बकाया आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और उससे बेटर हासिल करेंगे, तभी आप जंग को जीत पाएंगे. सो आने वाले समय का जो दौर है वो एक फिजिकल लड़ाई है और एक है जो तकनीक के द्वारा जीते जाने वाली लड़ाई है. और हम देख रहे हैं कि आज बाहर के देशों में, चाहे वो ईरान की लड़ाई चल रही हो, चाहे यूक्रेन की लड़ाई हो, उसमें छोटे छोटे देश भी अपनी तकनीक को इस्तेमाल करते हुए कितनी बहादुरी से और दिमाग से लड़ने की कोशिश जारी है. तो वो शायद चीजें हमें भी हासिल करने की जरूरत है, हम इससे अलग नहीं रह सकते.
0: जी, तो 100 बातों की एक बात कि एक सोल्जर को मानसिक शारीरिक रूप से सक्षम होना पड़ता है अगर उसे जीत हासिल करनी है, चाहे वो मैदान की जंग में हो या फिर हमारे सिविलियंस की जिंदगियों की बात क्यों ना हो. हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो सोल्जर्स ऑफिसर्स हैं, वो हमेशा मुस्तैद हैं हमारे लिए. एक बात और यहाँ

0: से जानना चाहते हैं, जैसे आपने खुद बताया था कि आप एफर्स ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन आप बहुत खुश हैं कि आपने इंडियन आर्मी के जरिए अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा को दिखाने का सौभाग्य प्राप्त किया। आपने ये भी कहा कि किस तरीके से मिलिट्री इंजीनियरिंग की जब बात होती है तो आप एयरफोर्स, नेवी, सबके लिए काम करते हैं, आपने भी ऐसा किया है, सभी फोर्सेस के लिए आपने काम किया, उस वक्त खुशी तो बहुत हुई होगी। कहते हैं जीवन ना एक चक्र की तरह है, कभी कभी जहाँ छूटता है वही जिंदगी को ले आता है।
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिकॉज यू नो एक व्हेन यू आर यंग आप कोशिश करते हैं कि आप वहीं जाना चाहें जहां पर आपकी यू नो आप जाना चाहते हैं, लेकिन कई बार भगवान के तरीके अलग होते हैं, तो शायद वो यू नो मुझे पायलट बनाने से किसी तरह से वंचित किया, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल के दौरान में एयरफोर्स के साथ, नेवी के साथ खूब जमकर काम किया और एक ऐसी फीलिंग आई कि हम उन्हीं का एक हिस्सा हैं, चाहे हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई कार्य हो या कहीं भी हो, तो एयरफोर्स की सुविधाएं हमें मिलती थी और अच्छा लगता था जब हम उनके जहाजों में बैठकर दूर दराज के क्षेत्रों में देखते थे कि भाई कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है इंजीनियरिंग की, जिससे उनको सहूलियत मिलेगी और हमारे जो देश के सिपाही हैं उनके कार्यशैली में एक क्षमता बढ़ेगी जिससे जिसका हमें काफ़ी गर्व है। तो हमने काफ़ी अच्छे बड़े बड़े रनवे बनवाए, टैक्सी ट्रैक्स बनवाए, एयरपोर्ट्स हवाई जहाज की जो सुविधाएँ हैं वो काफ़ी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाई, जिनकी वजह से आज हमारी सेनाएं वो सब हासिल कर पा रही हैं जिनकी हमें ज़रूरत है।
0: एक बात और, क्या मिलिट्री इंजीनियरिंग आपको दूरदर्शिता प्रदान करता है? क्योंकि कहते हैं कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित होता है जिसके बारे में किसी को भी पहले से नहीं पता होता है, लेकिन एक मिलिट्री पर्सन के लिए, एक इंजीनियर के लिए, खासतौर मिलिट्री इंजीनियर के लिए, क्योंकि वो सशक्त कर रहा है फोर्सेस को, उसके लिए अनफोर्सीन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर कुछ नया ईजाद करना कितना महत्वपूर्ण होता है?
1: बहुत दुरुस्त आपने सवाल किया और ये चीज़ें बहुत ही कारगर हासिल होती हैं जब आप अपनी इंजीनियरिंग के यू नो ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ का एहतियात करते हैं जिससे हमारे पूरे फोर्सेस को एक अच्छा मौका मिलता है, और जो कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान जो कभी हमने सोचे नहीं थे, हमें जब ऐसे टास्क मिले तो क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग की नॉलेज और हमारे जो लोगों ने हमें सिखाया वो इतनी कामयाब हुई कि हमें खुद सोचकर अच्छा लगा कि हमने सही किया, जो चीजें हमने सीखी और हम अपने देश के काम आ सके।
0: जी, सबसे बड़ा जज्बा तो एक फौजी के लिए यही होता है कि वो अपने देश के लिए काम कर रहा है अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपने देश प्रेम से, और शायद इस सुख से बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं। जीवन के 40 वर्ष आपने भारतीय सेना को दिए हैं, तो जब पीछे अतीत के पन्ने पलट कर देखते होंगे, बहुत सारी बातों को याद करते होंगे, तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं एक सुखद सांस उसको आप रोज भरते होंगे और अपने कार्यकाल को जो आपने जिया है उसे जरूर याद करते होंगे।
1: नहीं, अच्छा लगता है बिकॉज जो आपकी बचपन की उम्मीदें थी और आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो फौज में हो या ना हो, हर इंसान, एक हर नागरिक इस देश का अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा है, लेकिन हमें एक सौभाग्य मिला कि हम काफ़ी नज़दीकी से अपने देश के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, काफ़ी कुछ कर पाए, काफ़ी वर्क इन प्रोग्रेस है जो आने वाली जनरेशन से वो करेंगी, बट इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। और इसमें सबसे बड़ा जो हमारी सिखलाई है, जो हमें बताया जाता है कि देश के लिए 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो है नाम, नमक और निशान। नाम है आपकी अपनी पलटन का, आपके अपने जिस यूनिट में आप काम करते हैं, रेजिमेंट हैं, और उसको आप कैसे ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। एक सैनिक यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ता है कि उसके किसी भी कृत्य से उस गौरवशाली नाम पर कोई आंच ना आ जाए। फिर वो नमक की बात करता है, जब जहां पर वफादारी और कर्तव्य निष्ठता काम आती है, और जिस चीज जो नमक आप खाते हो उसका यह विश्वास का बंधन है जो सैनिक को वर्दी, कमान और अपने साथियों से कभी विश्वासघात ना करने की प्रेरणा देता है। निशान हमारे झंडे की बात होती है, यहाँ राष्ट्रीय तिरंगे रेजिमेंट के अपने झंडे और उसके इंसिग्निया का प्रतिनिधित्व करता है। निशान को हमेशा ऊंचा रखना देश के लिए एक संप्रभुता और रेजिमेंट के युद्ध समान, जो जिसको हम बैटल ऑनर्स बोलते हैं, कि रक्षा का एक संकल्प है जो कि हमारे रग रग में भर दिया जाता है, और यह एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपके काम आती है, चाहे वो पीस स्टेशन हो चाहे युद्ध का क्षेत्र हो। तो 3 चीजें हमेशा याद करें, नाम, नमक और निशान।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई

संदेश भेजना चाहते हैं संदेश टू सोल्जर्स इस कार्यक्रम में, तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं 9868107070 इस नंबर पर। और आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल अशोक कुमार, अति विशिष्ट सेवा मेडल से आपको नवाजा गया है आपके योगदान के लिए, और जिस तरह से आपने 40 वर्षों तक अपना योगदान दिया, आपके लिए सुखद पल बहुत सारे आपने अर्जित किए और आप भावी पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं।

0: सेवा मेडल से आप अलंकृत हैं और आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मेजर जनरल अशोक कुमार हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल अशोक कुमार आपसे जानना चाहते हैं कि हम जीवन में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो वो हमेशा चाहता है कि वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े। आप भी सेना में रहते हुए अलग अलग पोजिशन पर आगे बढ़ते गए और कहते हैं कि जब आप औहदे में आगे बढ़ते रहते हैं आपको हाईएस्ट पोजीशंस मिलती हैं तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी बहुत सारी बढ़ जाती हैं। बहुत सारे आपने कार्य किए लेकिन इन सब पोजीशंस में काम करने के साथ साथ कोई एक ऐसी चीज थी जो हमेशा एक जैसी रही और साथ चली 40 वर्षों, क्या वो एक ऐसी फीलिंग थी, क्या वो ऐसी बात थी जिसने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा? भले ही औहदा बढ़ता गया, जिम्मेदारी बढ़ती गई, लेकिन वो फीलिंग जब ज्वाइन किया था फोर्सेस तब भी वैसी थी और जब फोर्सेस छोड़ी तो आज भी वो बात जिंदा है, आपके दिल में पेवस्ट है।
1: जब आप किसी भी महकमे में जाते हैं करते हैं तो सबसे बड़ा जो एहसास है वो खासकर जो फौज का महकमा है वो एक आपको ऐसी उम्मीद देता है कि ये आप इसी को बिलोंग करते हो और इसी में आप बसते हो और वो जो चीज है वो आज भी ऐसा लगता है कि आप आज भी फौज में हैं, भले ही वर्दी नहीं पहनी है लेकिन एक एक एक एहसास होता है कि मैं इसी में जिया हूं और मैं इसी में मरना चाहता हूं। दूसरा जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें लगता है फौज से, एटलीस्ट मुझे सीखने को मिला है कि आप जब से फौज में आते हैं और जाते हैं हमेशा ये सीखने को मिला कि आप अपने जो जिनकी वजह से आप वहां तक पहुंचे हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो औहदे के अधिकारी हैं, बट जो जवान हैं, जो सबसे नीचे वाला तबका है, जो आपकी तरफ देखता है कि ये हमारा साहब है और बिना कुछ कहे आपस में हम एक दूसरे की बात को समझते हैं, वो एक ऐसी उम्मीद रखता है जिसमें आप बिना बताए, चाहे वो लड़ाई का मैदान हो चाहे अदरवाइज हो, आप उनकी उम्मीदों पे अगर खरे उतरेंगे तो आप वास्तविकता में आपने अपने जीवन को कुछ कर दिखाया है और वो उम्मीद बिना बताए बिना बोले हुए अगर आप कर पाते हैं और उसको साथ में लेकर चल सकते हैं तो वो एक ऐसा अचीवमेंट है जो मुझे लगता है कि हमेशा आपके साथ में होना चाहिए। कई बारी आपके जवान आपके लिए इतना कुछ कर जाते हैं लेकिन जब उनकी बारी आती है तो शायद आप उसे भूल ना पाए, एक ऐसा कुछ उसकी उम्मीदों पे खरे उतरे तो वो आपको जिंदगी भर याद करता है। और आज भी हमारे जो सैनिक हैं जो रिटायर हो गए उनसे जब बातचीत होती है तो हम अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और बताते हैं कि हमने उनसे क्या सीखा और उन्होंने हमें क्या सीख दी। एक छोटा सा उदाहरण था, जब मैं फौज में गया तो पहाड़ों के इलाके में थे, हमारे पास गाड़ियां थी तो हमने गाड़ी चलानी अपने एक सिपाही से सीखी, उसने हमें कोशिश की कि जो ट्रेनिंग है वो दे पाए और गाड़ी चलते समय पहाड़ के स्लोप पर रुक गई तो उसका नाम मुझे याद है आज भी, सिपाही ओम प्रकाश हुआ करता था। और वो गाड़ी रुकने के बाद में वो बाहर निकला और उन दिनों में हैंडल मार के गाड़ी को स्टार्ट करते थे, वो गाड़ी इतनी जोर से हैंडल लगा कि गाड़ी उछल के और नीचे रोल होनी शुरू हो गई तो हमने एक नाले के साइड में गाड़ी उल्टी होके चारों पहिए ऊपर और गाड़ी पलट गई। तो ओम प्रकाश का पहला वाक्य था कि लेफ्टिनेंट साहब आप घबराइए ना, हम ये जिम्मा अपने सर पे लेंगे। हमने कहा ओम प्रकाश ऐसा नहीं होगा, ये गाड़ी हमारी वजह से गिरी है तो हम जिम्मेवार हैं, तुम बस ये करो कि वहां से जाके कोई हेल्प लेके आओ। तो वो हादसा एक ऐसा हादसा था जहां पर आपका सिपाही आपके लिए आपको आंच नहीं आने देता है और कोशिश करता है कि मेरा जो साहब है वो हमेशा सर्वोपरि रहे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आप सीखते हो कि यदि आपने ऐसे दौरान में आप उनके साथ में खड़े हो जिंदगी भर उन चीजों को याद रखता है। और आज भी जब हम पुरानी चीजें बातें याद करते हैं तो बताते हैं कि साहब आपने हमारे लिए ऐसे किया था, भले ही वो कुछ अपना प्रमोशन नहीं मांगता है या अपने लिए कुछ ऐसी चीज नहीं मांगता है लेकिन जो उसकी सच्चाई है और उसका जो काम करने का तरीका है वो उसके साथ में आप जिंदगी कुछ ऐसे असूल सीखते हैं जो आपके दिल को हमेशा छू जाते हैं और आप समझते हैं कि एक सबसे बड़ा जो आदर है वो एक इंसान का इंसान के प्रति प्यार और उसकी एक ऐसी गरिमा है जिसको अगर आप बरकरार रखें तो वो जिंदगी भर आपके शायद काम आती है, भले ही उस मोमेंट में आप शायद कुछ मिस कर जाएं लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब चीजें आपको सोच के अच्छा लगता है। एंड उन्हीं उम्मीदों के साथ में हम जीत

आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार, एवीएसएम यानी कि अति विशिष्ट

0: हैं, कोशिश करते हैं कि अपने आने वाली जनरेशन को भी ऐसा ही कुछ सिख पाएं।
1: जी फौज की खास बात मुझे ये लगी कि जैसे जब जब भी हम इस प्रोग्राम में संदेश टू सोल्जर्स में आप जैसे ऑफिसर से बात करते हैं कि फौज में कोई अकेला नहीं है, हमेशा किसी हर किसी के साथ हर कोई है, ऐसा नहीं एक है, हर किसी के साथ हर कोई है। और ऐसे में जब आप अपने परिवार से दूर है तो आपको लगता है कि मेरा कौन सा ऐसा काम था जो मुझे पता नहीं लगा और वो हो भी गया, तो
0: बिल्कुल
1: शायद एक
0: हाँ
1: बड़ी खूबसूरत बात
0: हाँ
1: है फौज
0: खूबसूरत
1: की।
0: चीज है। और आप जब आप आगे सरहद पर अकेले रहते हैं, अकेले मतलब आप अपने फैमिली से परिवार से दूर होते हैं, आपके जो जवान हैं वो आपको ऐसा एक माहौल क्रिएट करते हैं जब आपको महसूस नहीं होते, और ऐसा महसूस होता है कि आपके परिवार के लोग आपके साथ में बकाया हैं, वो आपका उतना ध्यान रखता है, शायद आपका परिवार भी उस मंजर में शायद इतना ध्यान ना रखे। और ये छोटी छोटी चीजें जब बिन बनकर आप एक साथ सोचते हैं तो वाकई एक परिवार का एहसास होता है। और एक फौज में जो सबसे अच्छी सिखलाई है कि आप लास्ट मैन, यू नो यू हैव टू टच ग्राउंड विद द लास्ट मैन ऑन ऑन ऑन द फील्ड, यू कांट लीव एनीवन बिहाइंड। लड़ाई के दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है, आपका जवान क्षतिग्रस्त होता है, जब तक हम उसको निकाल कर सुरक्षित जगह पर नहीं लाते हैं, हम अपना कार्य शैली को सफल नहीं समझते हैं। और कई हमारे ऐसे कोर्सेज और ऐसे कॉम्पिटिशन होते हैं जहां हमने एक टुकड़ी के साथ में एक जीत हासिल करनी है, अगर उसमें आप समय से पहले आ गए लेकिन एक बंदा आपका अभी तक पीछे है, जब तक वो शामिल नहीं होगा आपकी जीत जीत नहीं मानी जाएगी। सो ये एक ऐसी मंजर है जिसको हम सीखते हैं। उसके अलावा जब कोई हमें कलेक्टिव टास्क मिलता है और हम में से कोई बंदा नहीं कर पाता है, तो उसको भी जब तक हम साथ में लेकर उस जीत को हासिल ना करें, वो जीत जीत नहीं मानी जाती है।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो ना केवल कृतज्ञता हम फौज से सीखते हैं, हम टीम स्पिरिट एकता भी हम फौज से ही सीखते हैं। और कहीं ना कहीं जब हमारे युवा ये कहते हैं कि हम फौज में जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जितने भी माता पिता हैं वो गर्व से उनका सीना पहले ही चौड़ा हो जाता है ये कहते हुए कि हमारा बच्चा फौज में जाना चाहता है। और यही फौज की खूबसूरत बात है कि वो सभी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और हर युवा यही चाहता है कि मैं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना प्रेम सेनाओं को, सेनाओं में भर्ती होकर दिखाऊं। तो ये जग आपके लिए है, सेनाएं आपके लिए है। अब आप उसे कैसे आत्मसात करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है।

0: संदेश टू सोल्जर्स आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है और आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार। एक सिपाही के लिए, एक सोल्जर के लिए, एक ऑफिसर के लिए, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो, लेकिन जब उसके कार्य को, उसकी जिम्मेदारियों को, उसकी कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया जाता है तो उसके लिए सबसे सुखद पल होता है। आपके लिए भी बहुत सुखद रहा होगा, ये भी कह सकते हैं कि आपने जिस चीज का इंतजार किया वो आपके आपके शोल्डर्स पर थी, आपकी ड्रेस पर थी, आपकी यूनिफॉर्म पर थी। अति विशिष्ट सेवा मेडल जिससे आपको नवाजा गया आपके सर्विसेज के लिए, आपके योगदान के लिए, तो उस वक्त वो जो पल होता है वो पल आपको क्या क्या याद दिलाता है? क्या आप अतीत में चले जाते हैं या सिर्फ याद करते हैं कि आज ये जो पल है ये पल इस वजह से आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आपने बस अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखा था इसलिए हुआ।
1: इंसान की एक फितरत है कि वो जब भी कोई काम करता है तो वो एक अवार्ड और रिवॉर्ड सोचता है। कई बारी वो अवार्ड शायद उसे तब नहीं मिलता जब वो मोस्ट हम्बली उसको डिजर्व करता है। कई बारी अवार्ड जो हैं वो ऐसे वक्त पर मिलते हैं जब आपके अंतिम चरण में आप इतना कुछ काम करके गवर्नमेंट आपके रिकग्नाइज करती है तो एक अच्छी फीलिंग आती है। इंसान इस दुनिया में जीता है कुछ कारणों से जिनमें से वो उम्मीद करता है कि उसके काम किए गए कार्यों का एक एक उसको शाबाशी दी जाए। जरूरी नहीं है कि वो मिले लेकिन जब मिलती है तो एक अच्छा एहसास होता है और मोर देन आपके अपने लिए वो एक एहसास आपके बच्चे जो आपके साथ में आपको यहाँ तक पहुँचाने में जिनका गौरव रहा है, आपके पिताजी, आपके माता जो जिन्होंने आपको बड़े होते हुए देखा और उम्मीद करते हैं कि उनका उनके बेटे को कुछ ऐसा अवार्ड मिला जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है तो एक काफ़ी गौरव और गर्व की बात होती है। सो जैसे हम कहते हैं कि रिसीविंग द मेडल वॉज अ डीपली हम्बलिंग रिकॉग्निशन an honor is never a resting point, it is a reaffirmation of the trust that people have in you, chahe wo aapke jawan ho, chahe aapke bacche ho, aapke mata pita ho, aapke rishtedar ho, sabko ek ummeed rehti hai aur it serves as a reminder of the dedicated soldiers and the teams whose collective effort made that contribution possible. To sabhi ka isme ek vishwas tha, ek aisi कोशिश थी कि सबने मिलकर आपको उस पैगाम तक पहुंचाया जिसका आप खुद जिम्मेवार तो थे लेकिन आपके पीछे जो लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनका मैं शुक्रगुजार हूं। एंड द अवार्ड रीइंफोर्स्ड माय कमिटमेंट टू कंटिन्यूस ड्यूटी इंश्योरिंग दैट एवरी सब्सिक्वेंट डिसीजन प्लान एंड मेंटरशिप एफर्ट रिफ्लेक्टेड द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड ऑफ द अवार्ड दैट आई गॉट। सो माई सिंसियर थैंक्स टू एवरीवन हु ओवर द इयर्स was there with me in getting and achieving what I finally achieved.
0: जी बहुत खूब, बहुत खूब। ग्रेटिट्यूड इज द वे ऑफ लाइफ और जिंदगी जीने का सलीका इस बात से पता लगता है कि हम कितने कृतज्ञ हैं और आपकी कृतज्ञता फोर्सेस की तरफ, अपने अवार्ड्स की तरफ और आपने जितने भी कार्य किए हैं आज तक उनकी तरफ आज इस शो के माध्यम से हमें सुनाई दी और कहीं ना कहीं हमें भी बहुत सारी प्रेरणा

0: आपसे मिली, एक व्यक्ति जिसका जिक्र ना हमने अभी तक नहीं किया, योर बेटर हाफ, शायद उनका आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। क्योंकि कहते हैं कि एक ऑफिसर को ऑफिसर एक माता पिता बनाते हैं, उसके अंदर वो संस्कार उसमें जीवंत रखते हैं हमेशा, उनके साथ भी उनके बाद भी हमेशा रहते हैं। लेकिन स्पाउस उन्हीं संस्कारों को आगे लेकर चलती है। आपके पीछे बहुत बार उन्होंने घर को संभाला होगा, कंप्लेन भी नहीं की होगी। लेकिन इससे पहले ये मुझे बताइए कि आप उनसे मिले कैसे थे?
1: आपने एक अच्छा सवाल पूछा। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज अ वूमन, एंड अनडाउटेडली इट हैज बीन माई वाइफ हुज नेम इज प्रीति। और जो गुड पार्ट है वो ये है कि हमारे जो दोनों के पेरेंट्स थे वो फौज में कोस्टमेट्स थे, जो नेवी में साथ में आए, और हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। और भाग्यशाली रहे कि हम आपस में हमारी शादी हुई और हमने अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जिया। और जो भी मैंने हासिल किया उसमें बहुत ज़्यादा हाथ मेरी बेटर हाफ प्रीति का था, एंड शी इज़ रियली वर्कड हार्ड फॉर वॉट एवर आई एम टूडे, एंड माई चिल्ड्रन हु निहारिका एंड आर्यन हु बीन वंडरफुल, एंड दे स्टूड लाइक रॉक बिहाइंड मी इन एवरी यू नो गुड और बैड पैटर्न्स ऑफ लाइफ, एंड इन द एंड इट वॉज एन अचीवमेंट विच आई कांट थैंक लेस टू दीज पीपल। And Preeti is now remains my biggest critique, but the kind of lessons that she's given me is something which is, you know, which I won't have done on my own. And मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भगवान ने अच्छी बच्चे दिए, अच्छी पत्नी दी, माँ बाप पेरेंट्स ने जो हौसला दिया जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, और ये अपने आप में एक अचीवमेंट है जो हर माँ बाप अपने बच्चे में देखता है, हर वाइफ हर हस्बैंड अपनी वाइफ में देखता है, और अपने बच्चों को आंख में आंख मिलाकर उम्मीद करता है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा और आज यहाँ तक पहुँच पाए।
0: बहुत खूब। और एक ग्रेटिट्यूड हमारी तरफ से तमाम लिसनर्स के लिए जिन्होंने हमें संदेश भेजे हैं और आपको सैल्यूट कर रहे हैं। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से जय हिंद यहां पर लिखकर भेजा है। बीके दत्त कॉलोनी से शबनम ने, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जिस तरह से प्यार देते हैं हमारे फौजियों को काबिले तारीफ है। संदेश यहां पर भेजा है नुसरत अली ने, और संदेश हमें हमारे पास मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से भी आया है जोया का, और ये आपके करेज को सलाम कर रही है, सलाम कर रहे हैं यहाँ पे आहिल अली बीकानेर से। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। यश शिंदे ने हमें संदेश भेजा है मुंबई से, और संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं। ये हैं धारा शिव महाराष्ट्र से, यशवंत इनका नाम है। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद इद्रिस ने संदेश भेजा है, और संदेश भेजने वाले बहुत से दोस्त हैं। कुछ दोस्त ये पूछ रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें, इसके लिए हम अलग सेशन आपके लिए जरूर आयोजित करेंगे। यहां पर मध्य प्रदेश से अजय का हमारे पास संदेश आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों का हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और धन्यवाद देना चाहते हैं मेजर जनरल अशोक कुमार जी का। मैं बस एक बात कहूंगी, वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, बट वंस अ मिलिट्री इंजीनियर इज ऑल्सो अ मिलिट्री इंजीनियर फॉर एवर। ये बात सच है ना?
1: बिल्कुल दुरुस्त है,
0: और इसीलिए इन्होंने काम करना बिल्कुल नहीं छोड़ा है, और ये कहेंगे कि इनकी इंजीनियरिंग आज तक कायम है, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब कहां कैसे इन्होंने आपके लिए आपका कोई सपना साकार कर दिया। अगर मन में ये बात आए तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं हमारे ये जो फौजी हैं, फौज में रहकर भी और फौज के बाद भी आपके लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। अब ये एक नगमा एफएम रेनबो की तरफ से, हम एफएम रेनबो का क्रेडिट ले रहे हैं, हम प्रीति मैम को ये डेडिकेट कर रहे हैं आपकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद,
0: जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

दोस्तों 101.9 FM पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम नए रंग। मैं हूं आपका दोस्त आरजे उसामा। सबसे पहले आज नए रंग में पेश होने वाले प्रोग्राम की तफसील आपको बताते हैं। दोस्तों प्रोग्राम का आगाज़ होगा हर्फ़ ताबिंदा से, तहरीर व पेशकश होगी।

0: FM Rainbow 101.9
1: प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत कल रात यानी 4 सितंबर को आप सुन सकते हैं। डॉक्टर एस जी विष्णु सतिया को उन्वान होगा न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन यूनानी मेडिसिन, यानी यूनानी मेडिसिन में हामला खवातीन के लिए गजाइयत से भरपूर खुराक। तो सामीन सुनना न भूलें डॉक्टर साहबा की मुफीद बातें और मशवरे रात 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के रेनबो FM 101.9 पर।

0: दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग। अब से कुछ देर पहले आपने सुना हर्फ ताबिंदा और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं मजाहिया मुशायरा। मजाहिया मुशायरा में आज हम जिन शोरा का कलाम सुनेंगे उनके नाम हैं उस्ताद सुखन जनाब चचा पाल मोरी साहब, जनाब सरदार असर, जनाब डॉक्टर मोइन अमर बम्बू, जनाब लतीफ़ुद्दीन लतीफ़, जनाब साजिद संजीदा साहब। तो आइए मजाहिया मुशायरा समाप्त कीजिए और भरपूर अंदाज़ में लुत्फ़ानंदोज़ होइए। लीजिए समाप्त कीजिए।
1: हमेशा की तरह हम लाए हैं आज भी आपके लिए दिलचस्प मिजाहिया मुशायरा। आज का ये मुशायरा हिंदुस्तान के नामवर उस्ताद सुखन शायर चिचा पालमुरी की सदारत में मुनाकिद हो रहा है। इस मुशायरे में मुल्क के जाने माने शोरा अपना कलाम पेश करेंगे, जिनमें सरदार असर, डॉक्टर मोइन अमर बम्बू, लतीफ़ुद्दीन लतीफ़, साजिद संजीदा और सदर मुशायरा चिचा पालमुरी हैं। दोस्तों, ये शोरा हैं जिनकी पहचान सारी अदबी दुनिया में है, न सिर्फ रियासती बल्कि बैनुल अक्वामी सतह पर जाने जाते हैं। आइए मुशायरे की इब्तदा एक ऐसे शायर से करते हैं जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में मुशायरों में अपनी पहचान बनाई है, जिनका मजाहिया कलाम सुनने के बाद इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाता है के कलाम में तगज्जुल किसे कहते हैं। मेरी मुराद जनाब साजिद संजीदा से है। नाम का जुज जरूर संजीदा है, लेकिन ये बहुत अच्छा मिजाह तख्लीक करते हैं। उन्हीं के इस शेर से मैं उन्हें दावत सुखन देना चाहूंगी। लोग कहते हैं देर शाना हूँ, लोग कहते हैं देर शाना हूँ, मुझको लगता है मैं दीवाना हूँ। जनाब साजिद संजीदा।
2: गजल का मतला पेशे खिदमत है। हूर परी सा चांद सा उसका चेहरा है कि क्या है कि, हूर परी सा चांद सा उसका चेहरा है कि क्या है कि, जुल्फों का भी उसकी रंग सुनहरा है कि क्या है कि, हूर परी सा चांद सा उसका चेहरा है कि क्या है कि, जुल्फों का भी उसकी रंग सुनहरा है कि क्या है कि। शेर देखिए, अपनी बीवी के ताने सुनकर भी वो खामोश रहा, वो भी मेरे जैसा गूंगा बहरा है कि क्या है कि, वो भी मेरे जैसा गूंगा बहरा है कि क्या है कि, कैसे मिलने जाऊं उसके घर को ये डर लगता है, कैसे मिलने जाऊं उसके घर को ये डर लगता है, उसके घर पे उसके बाप का पहरा है कि क्या है। मेरे किस्से हैं मैगजीनों में, मेरे किस्से हैं मैगजीनों में, मैं हूँ मशहूर सब हसीनों में।
3: क्या बात है भाई, वाह वाह।
2: मेरे किस्से हैं मैगजीनों में, मैं हूँ मशहूर सब हसीनों में, कितनी जरखेज है जमी घर की, खिल गया फूल 9 महीनों में।
3: क्या बात है,
2: कितनी जरखेज है जमी घर की, खिल गया फूल 9 महीनों में, एक से बढ़ के एक कुटनी है, एक से बढ़ के एक कुटनी है, बात ये मुश्तरिक है तीनों में।
3: क्या बात है भाई,
2: एक से बढ़ के एक कुटनी है, बात ये मुश्तरिक है तीनों में। लीमू कैरी इमली जामुन बेरा तोड़ के ला सकता हूँ, कैसे तोड़ के लाऊं हौली चांद सितारा नक्को कर, कैरी इमली जामुन बेरा तोड़ के ला सकता हूँ, कैसे लाऊं तोड़ के हौली चांद सितारा नक्को कर, क्या बोलेंगे लोगा सुन के तेरी चीखों की आवाज, क्या बोलेंगे लोगा सुन के तेरी चीखों की आवाज, खामोशी से प्यार करेंगे शोर पुकारा नक्को कर, खामोशी से प्यार करेंगे शोर पुकारा नक्को कर। गजल का मतलब अर्ज करता हूँ। 70 से ऊपर है फिर भी बोली 55 झूठी है, 70 से ऊपर है फिर भी बोली 55 झूठी है, अब मुझको मालूम हुआ है मेरी समधन झूठी है, लोगों से कहती फिरती है काम बहुत करती है वो, लोगों से कहती फिरती है काम बहुत करती है वो, मैं धोता हूँ घर के सारे कपड़े बर्तन
3: झूठी है, क्या बात है,
2: मैं धोता हूँ घर के सारे कपड़े बर्तन, पैदाइश है ओट्टे पल्ली की और कहती है मुझसे, अमेरिका में गुजरा मेरा पूरा बचपन,
3: झूठी है, झूठी क्या है, बात है भाई।
2: अमेरिका में गुजरा मेरा पूरा बचपन, क्यों मैं घूर के देखूंगा उसको वो हुर परी है क्या, क्यों मैं घूर के देखूंगा उसको वो हुर परी है क्या। मेरी बीवी से बोली कल मेरी पड़ोसन, झूठी है, शादी के दिन शादी खाने में फैला दी ये अफवाह, शादी के दिन शादी खाने में फैला दी ये अफवाह। चोरी हो गए 10 तोले सोने के कंगन, कम से कम 40 की होगी लेकिन उसका कहना है, कम से कम 40 की होगी लेकिन उसका कहना है, अब तक उसने देखे हैं बस 16 सावन।
3: क्या बात है भाई, वाह वाह वाह।
2: अब तक उसने देखे हैं 16 ही सावन। बेगम के बचपन की एक सहेली ने मुझसे ये कहा, बेगम के बचपन की एक सहेली ने मुझसे ये कहा, देख के तुमको बढ़ जाती है दिल की धड़कन, झूठी है, देख के तुमको बढ़ जाती है दिल की धड़कन। शौहर हूँ मैं दोनों की ही रग रग से मैं वाकिफ हूँ, शौहर हूँ मैं दोनों की ही रग रग से मैं वाकिफ हूँ। छोटी दुल्हन सच्ची है पन उसकी सौतन झूठी है, छोटी दुल्हन सच्ची है पन उसकी सौतन झूठी है। गजल का मक्ता पेश करता हूँ। मुझ पर रोब जमाने की खातिर साजिद वो बोली थी, मुझ पर रोब जमाने की खातिर साजिद वो बोली थी, उसके बाप ने बनवाया है उर्दू मस्कन।
3: अरे क्या मक्ता है भाई, वाह वाह।
2: मुझ पर रोब जमाने की खातिर साजिद वो बोली थी,
3: क्या बात,
2: मुझ पर रोब जमाने की खातिर साजिद वो बोली थी, उसके बाप ने बनवाया है उर्दू मस्कन।
3: झूठी
2: है,
3: वाह वाह।
2: 70 से ऊपर है फिर भी बोली 55 झूठी है, अब मुझको मालूम हुआ है मेरी समधन झूठी है। गजल का मतलब पेश करता हूँ। किसके साथ चलेगा मेरे इश्क का चक्कर, क्या है कि
3: क्या बात है,
2: किसके साथ चलेगा मेरे इश्क का चक्कर, क्या है कि अरमाना तो खूब है दिल में मेरा मुकद्दर क्या है कि
3: क्या बात है।
2: किसके साथ चलेगा मेरे इश्क का चक्कर, क्या है कि अरमाना तो खूब है दिल में मेरा मुकद्दर क्या है कि। प्यार बहुत करता हूँ उससे कैसे ये इजहार करूँ,
3: क्या बात है,
2: प्यार बहुत करता हूँ उससे कैसे ये इजहार करूँ। फोन तो उसके पास है लेकिन प्यार बहुत करता हूँ उससे, प्यार बहुत करता हूँ उससे कैसे ये इजहार करूँ, प्यार बहुत करता हूँ उससे कैसे ये इजहार करूँ। फोन तो उसके पास है लेकिन उसका नंबर क्या है कि। कहते हैं दिन पैदाइश का मेरी था इतवार का दिन, कहते हैं दिन पैदाइश का मेरी था इतवार का दिन, मेरी पैदाइश का महीना जून दिसंबर क्या है कि,
3: क्या बात,
2: मेरी पैदाइश का महीना जून दिसंबर। सबकी आंखों की जैसी लगती है उसकी भी आंखें, उसकी आंखें दरिया नदिया झील समंदर, सबकी आंखों के जैसी लगती हैं उसकी भी आंखें, सबकी आंखों के जैसी लगती हैं उसकी भी आंखें, उसकी आंखें दरिया नदिया झील समंदर क्या है कि। समझ नहीं आता है कुछ भी मुझको खेल सियासत का, समझ नहीं आता है मुझको कुछ भी खेल सियासत का। कौन मदारी किसकी रस्सी किसका बंदर
3: क्या है
2: कि,
3: क्या बात है,
2: कौन मदारी। समझ नहीं आता है कुछ भी मुझको खेल सियासत का,
3: वाह वाह वाह।
2: समझ नहीं आता है मुझको कुछ भी खेल सियासत का, कौन मदारी किसकी रस्सी किसका बंदर क्या है कि। शेर अर्ज करता हूँ। रात को अच्छी थी बेगम की सूरत अभी ददोड़े हैं, रात को अच्छी थी बेगम की सूरत अभी ददोड़े हैं, रात को अच्छी थी बेगम की सूरत अभी ददोड़े हैं। किसने काटा होगा उसको खटमल मच्छर क्या है कि। मुझको अपनी बीवी से बच्चों से काम से मतलब है, को अपनी बीवी से बच्चों से काम से मतलब है, कौन पड़ोसी किसकी बीवी किसका शौहर क्या है कि। मुझको अपनी बीवी से बच्चों से काम से मतलब है, कौन पड़ोसी किसकी बीवी किसका शौहर क्या है कि। इंटर डिग्री के बच्चों को मैं तारीख पढ़ाता हूँ, इंटर डिग्री के बच्चों को मैं तारीख पढ़ाता हूँ, मैं क्या जानूँ कौन है पौरस कौन सिकंदर क्या है कि।
3: क्या बात है भाई, वाह वाह वाह।
2: इंटर डिग्री के बच्चों को मैं तारीख पढ़ाता हूँ, इंटर डिग्री के बच्चों को मैं तारीख पढ़ाता हूँ, मैं क्या जानूँ कौन है पौरस कौन सिकंदर क्या है कि। एक माशा भी सोना उसको अब तक नहीं दिलाया मैं, एक माशा भी सोना उसको अभी तक नहीं दिलाया मैं, दावत में पहनी थी बेगम किसका जेवर क्या है कि। दावत में पहनी थी बेगम किसका जेवर, क्या है कि मैं स्मार्ट नजर आता हूँ साजिद लोग ये कहते हैं, मैं स्मार्ट नजर आता हूँ साजिद लोग ये कहते हैं, साबुन से बस मुंह धोता हूँ, स्नो पाउडर क्या है कि
3: क्या बात है,
2: साबुन से बस मुंह धोता हूँ, स्नो पाउडर क्या है कि किसके साथ चलेगा मेरे इश्क का चक्कर, क्या है कि अरमाना तो खूब है दिल में मेरा मुकद्दर क्या है कि
3: वाह वाह वाह वाह वाह।
1: संजीदा साहब की इस गैर संजीदा शायरी ने यकीनन हमारे सामईन में एक नया जोश और वलवला पैदा कर दिया होगा और आप यकीनन महसूस हुए होंगे। आइए अब मैं जनाब लतीफुद्दीन लतीफ साहब को दावत सुखन देती हूँ। उनके यहाँ तंज और मिजाह दोनों शबाब पर नजर आते हैं, तहत और तरन्नुम दोनों में कलाम सुनाते हैं, हर मुशायरे में उनका होना लाजमी समझा जाता है। जनाब लतीफुद्दीन लतीफ साहब न सिर्फ मिजाहिया कलाम लिखते हैं और पढ़ते भी बड़े अच्छे अंदाज में हैं, इसके अलावा आप ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं। उन्हीं के इस शेर से मैं उन्हें दावत सुखन देना चाहूंगी। बीवी हो कमाई पूत तो शौहर के मजे हैं, बीवी हो कमाई पूत तो शौहर के मजे हैं, हर कोई मुखद्दर का सिकंदर नहीं होता। जनाब लतीफुद्दीन लतीफ
4: सदर साहब की इजाजत से। सर पे वो मार मार के टखला किया मुझे, सर पे वो मार मार के टखला किया मुझे, चिपका के मेरी नाक भी नकटा किया मुझे,
3: क्या बात है,
4: चिपका के मेरी नाक भी नकटा किया मुझे, अब क्या बताऊं आपको क्या क्या किया मुझे, अब क्या बताऊं आपको क्या क्या किया मुझे, उसकी ही कान भैरी ने भैरा किया मुझे,
3: वाह वाह,
4: उसकी ही कान भैरी ने भैरा किया मुझे। आइए, पहले तो उसने खुद ही इशारा किया मुझे, पहले तो उसने खुद ही इशारा किया मुझे, अपना बना के अपना ही शहदा किया मुझे, अपना बना के अपना ही शहदा किया मुझे, शादी के बाद जानते हो क्या किया मुझे, शादी के बाद जानते हो क्या किया मुझे, बिछड़ा के माँ से बाप से तन्हा किया मुझे, बिछड़ा के माँ से बाप से तन्हा किया मुझे। शुक्रिया। आइए गजल का मतला चंद शेर समाप्त फरमाइए। हाल क्या पूछते हो आखर का, हाल क्या पूछते हो आखर का, रोज मंजर है घर में महशर का,
3: क्या बात है,
4: रोज मंजर है घर में महशर का, रोज मंजर है घर में महशर का, आला अफसर हूँ सारे दफ्तर का, आला अफसर हूँ सारे दफ्तर का, घर में रुतबा है पना टेंडर का,
3: सारा
4: आला अफसर हूँ सारे दफ्तर का, घर में रुतबा है पन अटेंडर का, बाल एक भी बचा नहीं सर का, बाल एक भी बचा नहीं सर का, सर हुआ फर्श संगे मरमर का,
3: क्या बात है,
4: सर हुआ फर्श संगे मरमर का, सर हुआ फर्श संगे मरमर का, कोसती है सदा वो यूं मुझको, कोसती है सदा वो यूं मुझको, मुर्दा निकलो जी इस दलिंदर का, मुर्दा निकलो जी इस दलिंदर का, मुर्दा निकलो जी इस दलिंदर का, उसके बाड़ों में आके छोड़ा घर, उसके बाड़ों में आके छोड़ा घर, अब रहा घाट का नाम मैं घर का, अब रहा घाट का नाम मैं घर का। ये शेर शोरा हजरात के लिए। दाद लेना है दाद देना है, दाद लेना है दाद देना है, काम इतना ही है सुखनवर का, काम इतना ही है सुखनवर का, दाद लेना है दाद देना है, काम इतना ही है सुखनवर का। मकता पेश है। रोज लड़ती लतीफ वो मुझसे, रोज लड़ती लतीफ वो मुझसे, लगता रिश्ता नहीं निभे सर का, लगता रिश्ता नहीं निभे सर का, हाल क्या पूछते हो आखर का, रोज मंजर है घर में महशर का। आइए एक दूसरी गजल का मतला समाप्त फरमाइए। चैन आराम था शादी की खता से पहले, मैं मुकर जाता तो अच्छा था रजा से पहले, मैं मुकर जाता तो अच्छा था रजा से पहले। इसी ऐसी शेर। लीडर देते हैं जनता

0: दवा से
1: दवा
0: पहले,
1: से
0: वाह
1: पहले,
0: वाह
1: यानी
0: वाह
1: वो जहर
0: क्या बात
1: पिलाते
0: वाह
1: हैं।
0: वाह वाह
1: दवा
0: दवा से
1: से
0: वाह बहुत खूब।
1: पहले, यानी वो जहर पिलाते हैं दवा से पहले। एक और मतलब है, घुसे लाता है।

0: तैयार खिचड़ी कर दिया खट्टा बगार
1: क्या
0: के,
1: बात है भाई,
0: तैयार खिचड़ी कर दिया
1: खट्टा
0: खट्टा
1: बगार बगार के,
0: बगार
1: वाह वाह,
0: के। फिर देखेंगे,
1: ईशा
0: चची
1: ईशा,
0: की उंगलियों पे चिचा नाचने
1: अरे
0: लगे,
1: वाह बात है,
0: चची की उंगलियों पे चिचा नाचने लगे, जैसे के तार हो गए हैं वो
1: सितार
0: सितार
1: के, क्या
0: के,
1: बात है,
0: जैसे के
1: वाह
0: तार हो गए हैं
1: वो
0: वो
1: सितार के,
0: सितार
1: वाह
0: के।
1: वाह
0: यह
1: वाह,
0: सच्चा शेर एक समाज फरमाइए,
1: ईशा
0: हाता
1: ईशा,
0: है मेरे खून से दोनों रंगे हुए,
1: वाह
0: हाता है मेरे खून से
1: दोनों रंगे
0: दोनों
1: हुए,
0: रंगे हुए, आया हूँ टोली चौकी पे मच्छरों को मार के,
1: क्या बात है
0: आया
1: भाई, वाह वाह वाह
0: हूँ
1: वाह वाह,
0: टोली चौकी पे
1: बहुत खूब
0: मच्छरों
1: बहुत खूब,
0: को
1: वाह वाह
0: मार
1: वाह वाह वाह
0: के,
1: वाह वाह,
0: हाता है मेरे खून से
1: दोनों रंगे हुए,
0: दोनों रंगे
1: वाह
0: हुए,
1: वाह वाह
0: आया हूँ टोली चौकी पे मच्छरों को मार
1: वाह
0: के,
1: वाह वाह,
0: आया हूँ टोली चौकी पे मच्छरों को मार के। ये मस्ता संजीदा हो गया है सबके।

0: बाला पकड़ती पहले वो टोपी उतार के।
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: कहने
1: वाह
0: दे,
1: वाह, क्या
0: बहुत
1: बात
0: सही
1: है।
0: बात, बहुत
1: अब
0: बहुत
1: तो
0: सही
1: भाई बना भाई के खून का प्यासा,
0: का प्यासा।
1: अब तो भाई बना भाई के खून का प्यासा, मच्छरां खटमला थे खून के प्यासे। आज के हालात पर इतना अच्छा संजीदा लेकिन मिजाहिया शेर, उन्हीं की ये खूबी है कि वो इस तरह की संजीदा बात को भी मिजाहिया अंदाज में कहते हैं। तो सामाइन, आज हमारे इस महफिल में हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जो बहुत संजीदा है, लेकिन कमाल का मिजाज उनके कलाम में मिलता है। बेहतरीन नाज़िम मुशायरा की हैसियत से जाने जाते हैं, उनकी नज़ामत मुशायरों की कामयाबी की जामिन है। जनाब
0: बस
1: सरदार असर साहब जो खूबसूरत शेर कहते हैं, जो सलीस उर्दू के अलावा दक्कनी जबान में भी सामईन को महजूज करते हैं। एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगी कि आज के हमारे शोरा कमाई पुत बीवी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आप ही के एक शेर से मैं आपको दावत सुखन देना चाहूंगी। गुलाम आपको अपना बनाने वाली
0: अरे
1: है,
0: वाह वाह,
1: गुलाम आपको अपना बनाने वाली है, सुना है आपकी बीवी कमाने
0: अरे
1: वाली
0: वाह
1: है।
0: वाह, बहुत
1: जनाब सरदार असर साहब।
2: मुलाहिज़ा फरमाएं
0: इरशाद
2: कि गुलाम आपको अपना बनाने वाली है,
0: जी,
2: गुलाम आपको अपना बनाने वाली है, सुना है आपकी बीवी कमाने वाली। मुलाहिज़ा फरमाएं कि
0: जी
2: वो चाहे जूता हो, चप्पल हो या के बेलन
0: बेलन
2: हो,
0: हो।
2: हमारी अहलिया पक्की निशाने
0: अरे
2: वाली
0: वाह
2: है।
0: वाह
1: अरे
0: वाह, बहुत खूब, बहुत खूब,
2: वाह
0: वाह वाह, पक्की निशाने वाले,
2: सुना है
0: बहुत
2: आपकी
0: खूब भाई।
2: बीवी कमाने वाली है जनाब सदर की इजाजत से। कब किसी ने कुछ सफाई में मुझे कहने दिया,
0: जी
2: आंख से बहते थे जो आंसू उन्हें बहने दिया।
0: हवा
2: कब किसी ने कुछ सफाई में मुझे कहने
0: कहने
2: दिया,
0: दिया,
2: आंख से बहते थे जो आंसू उन्हें बहने
0: बहने
2: दिया।
0: दिया।
2: बाप भाई ने तेरे मिलकर बहुत पीटा मुझे,
0: अरे वाह,
2: राज की बातें लिखी और खत खुला रहने दिया।
1: अरे वाह,
2: और एक तस्वीर मुलायदा फरमाए, गालिब के मिसरे से इस्तेफादा किया है कि महफिलें इन गुल रुखों से एक गुलिस्ता हो गई।
0: अच्छा
2: जनाब सदर की तवज्जो चाहूंगा कि महफिलें इन गुल
0: जी,
2: रुखों से एक गुलिस्ता हो गई, देखते ही देखते सब दुश्मने जा हो गई।
0: हाँ
1: वाह,
2: नाजिमा निखत नसीमा सब यही मौजूद
1: मौजूद
2: हैं,
0: हाँ,
2: खाक
0: खाक
2: में
0: में
2: क्या
0: क्या
2: सूरतें
0: सूरतें
2: होंगी
0: होंगी
2: जो
0: जब
2: पिन्हा
0: पनाह होंगे।
2: होंगी।
0: हाँ
2: ये दो तज़मीनें थीं। अब मैं कुछ एक आध खता आज के हालात पर पेश करना चाहूंगा, बल्कि शायर की जिंदगी का एक दूसरा रुख भी होता है। मुलाहिज़ा फरमाएं कि अच्छे अच्छों को फन में झटकता रहा, झटकता
0: झटकता
2: रहा, शेर अपने सुनाकर मटकता रहा।
1: क्या बात है भाई,
0: क्या
2: अच्छे
0: कहने,
2: अच्छों को फन में झटकता
1: वाह,
2: रहा, शेर अपने सुनाकर मटकता रहा, लोग सारे कहां से कहां हो गए,
0: लोग
2: मैं
0: सारे
2: ख्यालों में अपने भटकता रहा।
1: क्या बात है भाई,
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
2: लोग सारे कहां से कहां हो गए, मैं ख्यालों में अपने भटकता रहा। के बिल्कुल ही जो है एक ताजा गजल है, उसके दूसरा
0: इरशाद
2: शेर
0: इरशाद,
2: मुलाहिज़ा फरमाएं कि मैं भी अपने दौर का जिल्ले सुभानी हूँ मियाँ।
0: अरे
2: क्या
0: वाह,
2: बात
0: क्या
2: है भाई,
0: कहने
2: वाह
0: भाई,
2: वाह वाह
0: वाह
2: वाह,
0: वाह,
2: ऐसा वैसा मत समझना,
0: हाँ,
2: खानदानी हूँ मियाँ।
0: अरे
2: अरे
0: वाह,
1: क्या
0: वाह
1: बात है भाई, वाह वाह वाह,
2: मैं
0: क्या
2: भी
0: कहने
2: अपने
0: भाई,
2: दौर का जिल्ले
0: जिले
2: सुभानी
0: सुभानी
2: हूँ
0: हूँ
2: मियाँ,
0: मियाँ,
2: ऐसा वैसा मत समझना, खानदानी
0: खानदानी
2: हूँ
0: हूँ
2: मियाँ।
0: मियाँ,
2: और शेर देखिए कि इसलिए कड़वी लगा करती हूँ मैं सबको यहाँ,
0: जी
2: इसलिए कड़वी लगा करती हूँ मैं सबको
0: सबको
2: यहाँ,
0: यहाँ,
2: झूठ की दुनिया है ये, मैं सच बयानी हूँ मियाँ।
0: अरे
2: क्या
0: वाह
2: बात
0: वाह
2: है,
0: वाह वाह वाह,
2: झूठ की
0: क्या
2: दुनिया है ये, मैं सच बयानी हूँ मियाँ। और ये शेर देखिए कि एक थोड़ा सा हटके है इस कबील से कि कर लिया करता हूँ मेकअप खुश लिबासी पर कभी,
0: कर
2: कर
0: लिया
2: लिया
0: करता
2: करता हूँ
0: हूँ मेकअप
2: मेकअप
0: खुश लिबासी पर
2: खुश
0: कभी
2: लिबासी पर कभी,
0: कभी।
2: मर्द हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा जनानी हूँ मियाँ।
0: अरे
2: क्या कहने भाई, वाह
0: वाह,
2: वाह वाह वाह, मर्द
0: क्या कह,
2: हूँ कि मुफ्त में अब जहर भी मिलता नहीं बाजार में।
0: क्या
2: क्या
0: कहने
2: तंज
0: भाई,
2: मुलायदा
0: बेशक,
2: फरमाए
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: कि मुफ्त में
0: अब
2: अब जहर
0: जहर
2: भी
0: भी
2: मिलता
0: मिलता
2: नहीं
0: नहीं
2: बाजार
0: बाजार में।
2: में, दिन ब दिन बढ़ती हुई ऐसी गिरानी हूँ मियाँ।
0: क्या
2: क्या बात
0: कहने,
2: है
0: क्या
2: भाई,
0: कहने,
2: वाह
0: क्या
2: वाह वाह
0: कहने
2: वाह
0: भाई।
2: वाह। हजरत, इस मौके पर मुझे एक छोटा सा खुद अपना लतीफा याद आया
0: जी
2: कि मैं जो है अब चूल्हे में अपनी अहलिया की मदद करने के लिए गया।

0: प्याज वगैरह काट रहा था, तो हमारे अलिया ने कहा कि इतनी सारी प्याज आपने काट दी लेकिन आपकी आंख से एक भी आंसू नहीं बहा। तो मैंने कहा प्याज खरीदते वक्त बह गए।
1: क्या बात है,
0: अशार जो है मुलायदा फरमा, एक मैंने बचपने में एक पोएम पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो उसका मैंने दूसरा हिस्सा ले लिया, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, दो तीन शेर कहने की कोशिश की। बिल्कुल कितने घटिया है किरदार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर,
2: क्या
1: बात है,
0: दोस्त है और पीछे से वार,
1: हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, वाह वाह वाह वाह,
2: क्या कहें,
0: दोस्त है और पीछे से वार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब ये शेर देखिए कि एक बीवी, हाँ एक बीवी के साथ ही अब तक उम्र गुजारी मुश्किल से, एक बीवी के साथ ही अब तक उम्र गुजारी मुश्किल से, आपने रखे पूरे चार।
2: अरे वाह वाह वाह वाह, अरे वाह,
0: कि बीवी के लच्छे में हमको पदक लगाना मुश्किल है,
2: बीवी के लच्छे में हम,
0: बीवी के लच्छे में हमको पदक लगाना मुश्किल है, महबूबा को चंदन हार।
2: क्या कहने, अरे वाह वाह वाह,
1: क्या बात है भाई, वाह वाह वाह,
0: बीवी के लच्छे में हमको पदक लगाना मुश्किल है, महबूबा को चंदन हार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, कितने घटिया हैं किरदार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, दोस्त हैं और पीछे से वार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। और एक गजल के एक दो चार शेर मुलाहिजा फरमाएं, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर के बाद मैंने कुछ हटकर कहने की कोशिश की है कि मिल गई हमको सजा तुझसे शनासाई की, तेरे घर वालों ने जूतों से पजीराई की।
1: क्या बात है,
0: मिल गई हमको सजा तुझसे शनासाई की, तेरे घर वालों ने जूतों से पजीराई की, और एक शादी का असर मुझ पे हुआ है इतना, एक शादी का असर मुझ पे हुआ है इतना, कांप जाता हूँ सदा आते ही शहनाई की। एक शादी का असर मुझ पे हुआ है इतना, कांप जाता हूँ सदा आते ही शहनाई की, कांप जाता हूँ सदा आते ही शहनाई की, वो पड़ोसन पर भी हक अपना समझ लेते हैं, वो पड़ोसन पर भी हक अपना समझ लेते हैं, है यही बात बुरी मेरे बड़े भाई की।
1: अरे वाँ।
0: मिल गई हमको सजा तुझसे शनासाई की,
1: शहनाई वाला शेर,
0: तेरे एक शादी का असर मुझ पे हुआ है इतना,
1: क्या बात,
0: एक शादी का असर मुझ पे हुआ है इतना, कांप जाता हूँ सदा आते ही शहनाई की।
1: क्या बात है भैया,
0: कांप जाता हूँ सदा आते ही शहनाई की। और एक गजल के चंद शेर मुलायदा फरमाए, मैं चुनिंदा चंद शेर पेश कर रहा हूँ मुलायदा फरमाए, लीडर थोड़ा सा सियासी तंज है, तंज गालिब है, मिजाक कम है, मुलायदा फरमाए कि लीडर के पास फन ये निराला है।
2: जी
0: जदीद देखिए,
1: जी
0: लीडर के पास
1: फन ये निराला है,
0: फन ये निराला है हाथ में, हुब्बे वतन है लब पे, घोटाला है हाथ में।
2: अरे क्या कहने भाई, अरे वाह वाह वाह,
0: लीडर के पास फन ये निराला है हाथ में, हुब्बे वतन है लब पे, घोटाला है हाथ में, अब दोस्ती का हाथ मैं कैसे मिलाऊंगा, अपनी अनानियत का जो छाला है हाथ में।
2: क्या क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने,
0: अब दोस्ती का हाथ
1: जवाब
0: मिलाऊंगा, अपनी अनानियत का जो छाला है हाथ में, और कर दो किसी का खत्ल, चालेंगे हम तुम्हें,
2: कर दो किसी का खत्ल,
0: कि कर दो किसी का खत्ल,
1: चालेंगे
0: हम तुम्हें, मरकज के एक वजीर का साला,
1: मरकज के एक वजीर का साला है हाथ में,
0: वाह वाह, किसी का खत्ल, यूं तो कमाई झूठ की खाता रहा सदा, कैसे कहूं मैं सच के निवाला है हाथ में।
2: क्या बात है, अरे क्या कहने भाई, वाह वाह वाह,
0: झूठ की खाता रहा सदा, कैसे कहूं मैं सच के निवाला है हाथ में। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत,
2: बहुत बहुत अच्छा असर आपने छोड़ा है।
3: एक शादी का असर मुझ पर हुआ इतना, एक शादी का असर मुझ पर हुआ इतना, कांप जाता हूँ सदा आते ही शहनाई की।
2: क्या
3: बहुत बेचारे वाकई बहुत डरे सर में। सामईन कराम, अब मैं हैदराबाद के एक नामवर मोहतरम शायर को दावत कलाम देती हूँ, जिन्होंने एक बड़ा अरसा अदब की खिदमत में गुजारा है, तंजो मिजाह के साथ साथ ड्रामे भी तश्कील देते रहे हैं। मेरी मुराद डॉक्टर मोइन अमर बम्बू से है, उन्हीं का एक शेर उनकी शख्सियत की पहचान है। दिल पहले तो लगाई तेरी ऐसी की तैसी, दिल पहले तो लगाई तेरी ऐसी की तैसी, अब हो गई पराई तेरी ऐसी की तैसी।
1: क्या
3: जनाब डॉक्टर मोइन अमर बम्बू
4: लीजिए, सबसे पहले आदमी रिटायरमेंट होने के बाद उसकी क्या हालत हो जा, जरा सुनिए, हालत है अपनी गिरती दीवार की तरह।
1: क्या

0: कहने
1: वाह
0: साहब, वाह वाह वाह,
1: हालत है अपनी गिरती दीवार की तरह, म्यूजियम की जंखाई तलवार की तरह।
0: क्या बात है भाई, वाह वाह वाह वाह वाह,
1: म्यूजियम की जंखाई तलवार की
0: तलवार की
1: तरह।
0: तरह।
1: रिटायर्ड क्या हुए हम बम्बू मुलाजिमत से, घर में पड़े हैं बासी अखबार की तरह।
0: अरे
1: अरे
0: वाह
1: वाह
0: बात है,
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: बात
1: वाह
0: है,
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: बात है,
1: वाह।
0: वाह वाह
1: रिटायरमेंट का एक फायदा तो हुआ मुझे,
0: जी।
1: वो सुनिए क्या फायदा हुआ।
2: इर्शाद।
1: मैं रिटायर्ड होकर भी हूँ काम का कुछ, मैं रिटायर्ड होकर भी हूँ काम का कुछ, बुढ़ापे में सब मेरे काम आ रही हैं।
0: क्या बात है,
1: बुढ़ापे में
0: सब
1: सब
0: मेरे
1: मेरे
0: काम आ
1: काम आ
0: रही
1: रही
0: हैं।
1: हैं। जो बेवाएं कल तक नहीं पूछती थी,
0: नाम
1: वजीफे में लिखवाने नाम आ
0: आ
1: रहे
0: रही
1: हैं।
0: है,
1: क्या
0: और
1: बात
0: क्या बात है, क्या
1: है,
0: बात
1: वाह
0: है। हाँ
1: वाह। परसों मुझे एक लड़की मिली थी,
0: हाँ
1: परसों मुझे एक लड़की मिली
0: हाँ
1: थी, बोली आप इस तक छोड़ दियो, लेको जा रहा था। साला देखा लेकिन साला शक नहीं करता,
0: हाँ
1: मुझसे ही तुम काई को मंगे लिफ्ट पूछा। तो लड़की बोली बुड्ढों के हम साथ रहे तो देखने वाला शक नहीं करता।
0: अरे वाह
1: क्या
0: वाह
1: बात
0: वाह, क्या
1: है, वाह वाह वाह,
0: बात
2: अच्छा फार्मूला दिया है आजकल की नस्ल को,
1: वाह
0: वाह
1: वाह। लीजिए वो अकदे सानी मेरा कहने को सुहाना लग रहा है। अकदे सानी बोले तो दूसरी शादी को अकदे सानी बोलते हैं।
0: जी,
1: अकदे सानी मेरा कहने को सुहाना लग रहा है, था लिफाफा नया मजबून पुराना लग
0: पुराना
1: रहा
0: लग
1: है।
0: रहा है।
1: क्या बात
0: था
1: है भाई,
0: लिफाफा
1: नया मजबून पुराना लग रहा है, घूंघट उठते च मेरे दीदे निकल गए बंबू, टाप 90 था मगर रिक्शा पुराना लग रहा है।
0: वाह वाह वाह,
1: माँ बाप मोटी ताजी से शादी करा दिए,
0: वाह।
1: लाही जहेज खूब तो दिल से दुआ दिए।
0: क्या कहें,
1: मैं जिंदगी की गाड़ी को कैसे चलाऊं अब, विस्पा में मेरी लारी का पहिया लगा दिए।
2: क्या मिसाल दी,
0: वेस्पा
1: अरे वाह
0: में।
1: वाह वाह। अब
0: वाह
1: जरा संजीदा दौर में आ जाएंगे,
0: भाई,
1: कौमी यकजहती पे एक नज्म है साहब, जरा
0: इरशाद
1: मुलाहिजा फरमाइए।
0: जी,
1: इरशाद,
0: इरशाद
1: इरशाद, जरा गौर से सुनिए।
0: इरशाद।
1: दिल में जो छुपी बात है वो आज कहेंगे, दिल में जो छुपी बात है वो आज
0: आज कहेंगे।
1: कहेंगे, हम एक थे हम एक हैं हम एक
0: वाह,
1: रहेंगे।
0: अरे वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह
0: क्या
1: वाह।
0: बात,
1: दिल में जो छुपी बात है वो आज कहेंगे, हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे। वो लुत्फ इस जहां की दौलत में नहीं है, वो लुत्फ
0: इस
1: इस
0: जहां की
1: जहां की
0: दौलत में
1: दौलत
0: नहीं
1: में
0: है।
1: नहीं है, जो इत्तेहाद में है वो नफरत में नहीं है,
0: क्या बात,
1: जो इत्तेहाद में है
0: वो
1: वो
0: नफरत
1: नफरत
0: में
1: में
0: नहीं
1: नहीं
0: है।
1: है। नफरत की हवाओं का रुख आज मोड़ दो, दुनिया में भेदभाव की हर रस्म तोड़ दो, ये सारे गम जमाने के हम मिलके सहेंगे, हम एक थे हम एक हैं हम
0: हम एक
1: एक
0: हैं, एक
1: रहेंगे।
0: रहेंगे।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: वाह वाह,
1: ऐसे रहो जहां में तुम हो के बेमिसाल, ऐसे
0: ऐसे
1: रहो
0: रहो
1: जहां में
0: तुम
1: तुम
0: हो के
1: हो के
0: बेमिसाल
1: बेमिसाल,
0: बेमिसाल।
1: हरगिज कभी जुदाई का आए नहीं ख्याल, हरगिज कभी जुदाई का
0: आए
1: आए
0: नहीं
1: नहीं
0: ख्याल,
1: ख्याल, त्योहार हो या ईद हो सब मिलके मनाएं, नगमे वफा के प्यार और मोहब्बत से सुनाएं, एक दूसरे के गम और खुशी मिलके सहेंगे, हम एक थे हम एक हैं हम
0: हम
1: एक
0: एक रहेंगे।
1: रहेंगे।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
1: चाहत से दुश्मन को देखोगे प्यार से, चाहत से जो
0: जी
1: दुश्मन को देखोगे प्यार से वो दोस्त नजर आएगा हर एतबार से, तुम एक हो तो कोई बुरा कर नहीं सकता, फितना कोई भी तुमको जुदा कर नहीं
0: क्या
1: सकता,
0: बात,
1: दरियाए मोहब्बत में सदा मिल के बहेंगे, हम एक थे हम एक हैं हम
0: हम
1: एक
0: एक रहेंगे।
1: रहेंगे।
0: वाह खूब, बहुत खूब,
1: खुशबूए गुल जुदा है तो लेकिन चमन है एक,
0: वाह
1: खुशबूए गुल जुदा है तो लेकिन चमन है एक, रंगे लहू है एक तो अपना वतन है एक,
0: क्या बात,
1: मिलके रहोगे बम्बू तो दिल शाद करेगी, हर आने वाली नस्ल तुम्हें याद
0: याद
1: करेगी,
0: करेगी।
1: एक
0: वाह वाह, क्या
1: साथ
0: बात
1: हम
0: है, क्या
1: जो
0: बात है,
1: रोए
0: वाह
1: एक साथ हम जो रोए तो एक साथ हंसेंगे, साथ हम जो रोए तो एक साथ हंसेंगे हम एक थे हम एक हैं हम एक रहेंगे।
3: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब भाई।
1: ये आजकल शादियों में की तकरीब में वीडियोग्राफर को जो बुलाया जाता है उसका हाल सुनिए साहब। कोई तकरीब हो फूलों का चमन देखता

0: है, कोई तकरीब हो फूलों का चमन देखता है, कितने खुश रंग लिबासों में बदन देखता है।
1: क्या बात,
2: वाह वाह,
0: बंबू क्या वीडियो वाला भी है किस्मत का धनी, दुल्हे से पहले ये कंबख्त दुल्हन देखता
1: अरे
0: है।
1: वाह वाह वाह, क्या
2: क्या
1: बात
2: बात
1: है,
2: है भाई, अरे
1: वाह
2: बात,
1: वाह
2: अच्छा तंज,
1: वाह,
2: अच्छा तंज,
1: बिल्कुल
2: बहुत अच्छा
1: मजा
2: तंज किया
1: था,
2: आपने समाज
1: सही
2: का।
1: कहा
2: वाह
1: आपने।
2: वाह,
0: और एक, हुआ अफसोस क्या किया बीवी के धोखे में, हुआ अफसोस क्या किया बीवी के धोखे में, जहर का जाम मैंने पी लिया बीवी के
2: बीवी के
0: धोखे में।
2: धोखे,
1: अरे वाह,
0: मेरी सास ब्यूटी पार्लर से सच कर घर में जब आई, हेलो डार्लिंग उसको कह दिया बीवी के धोखे में।
2: क्या बात
1: अरे
2: है,
1: बहुत
2: वाह
1: खूब
2: वाह
1: बहुत
2: वाह।
0: एक तंजिया चव्वा है साहब, शोकेश में है जूते, फुटपाथ पर किताबें।
2: अच्छा,
0: शोकेश में है जूते,
2: वाह वाह वाह,
0: फुटपाथ
2: क्या
0: पर किताबें, सदियों के बाद अब भी दौरे जहालत है।
2: बात है,
0: सदियों के
2: क्या
0: बाद अब भी दौरे जहालत है, देखा जो मैंने बम्बू, अंदाजा हुआ मुझको इंसान को इल्म की नहीं जूतों की जरूरत है। इंसान को इल्म की नहीं जूतों की जरूरत है।
2: बहुत
0: यह एक और संजीदा चव्वा मुलाहजा फरमाइए,
2: इर्शाद।
0: वक्त खजा महज है जान का लहू, वक्त खजा महाफिज है जान का लहू,
2: जी
0: इंसान के काम आता है इंसान का लहू।
2: वाह क्या बात,
0: उस वक्त पूछता नहीं ये कोई डॉक्टर, हिंदू का लहू है या मुसलमान का
2: अरे
0: लहू,
1: वाह क्या बात है,
2: हिंदू
1: क्या
2: का
1: बात
2: लहू
1: है,
2: है,
1: क्या बात,
2: वाह वाह
0: है। ये नौजवान नस्ल के ताल्लुक से, मुश्किल मेरी आसान क्या मौला नहीं करता,
2: आसान
0: मुश्किल मेरी आसान
2: आसान
0: क्या
2: क्या
0: मौला नहीं
2: मौला नहीं
0: करता,
2: करता,
0: इस वास्ते बंदों पे मैं तकिया नहीं करता। जिस दिन से बहू आई है घर में मेरे अपने, बेटे की कमाई पे भरोसा नहीं
2: क्या बात,
0: करता,
2: वाह वाह
0: बेटे
2: वाह
0: की
2: वाह वाह
0: कमाई
2: वाह
0: पे
2: वाह
0: भरोसा नहीं
2: वाह वाह,
0: करता।
2: बहुत खूब,
0: बड़ी मनहूस है ताबीर मेरे ख्वाब के साथ,

0: छींक भी आए तुझे तो मैं परेशान रहती थी, जागती थी रात भर तुझको सुला देने के बाद, जागती थी रात भर तुझको सुला देने के बाद, बीवी की ताईद लेकर झिड़कियां देता है अब, बीवी की ताईद लेकर झिड़कियां देता है अब, बददुआ किस मुंह से दूं तुझको दुआ देने के बाद, बददुआ किस मुंह से दूं तुझको दुआ देने के बाद।
1: जनाब मोइन अमर बंबू के बाद अब मैं नहायत अदब और एहतराम के साथ सदर मुशायरा चिचा पालमुरी को दावत सुखन देती हूँ कि वो अपना कलाम सुनाए। चिचा पालमुरी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनका नाम बैनुल अख्वामी सतह पर जाना जाता है। संजीदा व मिजाहिया दोनों तरह की शायरी करते हैं, बेहतरीन नादगो शायर की भी हैसियत से जाने जाते हैं। चिचा पालमुरी की शख्सियत पर सरदार सलीम का ये शेर पेश है, दिल में रखा लब पे वावेला नहीं होने दिया, दिल में रखा लब पे वावेला नहीं होने दिया, मैंने तेरे दर्द को मैला नहीं होने दिया। जनाब चिचा पालमुरी।
2: मोहतरम सामईन, ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद से जो मिजाहिया मुशायरा अब तक जो आपने सुना है, ये चार भतीजों की बारी थी, अब आखिर में चिचा की बारी है।
3: क्या बात है,
2: मैं चाहता हूँ जो चेहरा झुर्रियों से याद से मामूर होता है, जो चेहरा झुर्रियों से याद से मामूर होता है, वजीफा तब कहीं सरकार से मंजूर होता है। अजब क्या है चिचा जब बज्म में आए तो हलचल हो, अजब क्या है चिचा जब बज्म में आए तो हलचल हो, जहां हो चार बंदर एक वहां लंगूर होता है। एक हजल के कुछ शेर पेशे खिदमत हैं उनके।

औरतां मर्दां सब घर के जादूगरा, कोई चक्कर चलाए तो मैं क्या करूं, औरतां मर्दां सब घर के जादूगरा, कोई चक्कर चलाए तो मैं क्या करूं। शेर सुनिए, मैं

बच्चे उठ कर सताए तो मैं क्या करूं, जाग उठते ही झाड़ू लगाना तो है, बर्तना धो को तालू।

0: है,
1: जब के
0: सर
1: भर को उनके जुआ हैं, मगर मेरी तालू खुजाए तो मैं क्या करूं। ये जो समाखराची का जो मैंने आपका वक्त खराब किया है, असल में मुझे सुनाने हैं दो बंद इस नज़म के, मुझे सिर्फ दो बंद सुनाना है। एक बंद है जो आजकल जिस तरह की शादियां हो रही हैं, लेकिन इसमें दो अहादीस का इसमें मैंने जिक्र करने की कोशिश की है, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। ब्यांड बाजे पटाखों की है गड़बड़ी, और दावत में नल्ले तलक दे तड़ी,

एक और बंद सुनिए, चांद के सात तारों के दसमा डला, 14 सदियों से हासिल हैं दो आफरा। चांद के सात तारों के दसमा डला, 14 सदियों से हासिल हैं दो आफरा, रूबरू आज भी है।

मैं क्या करूं, मक्ते का मुलाजा हो, मेरी किस्मत में लिखो है दो एटमा, बावजूद इसके आते हैं फोटुआ, मेरा फिगर ही ऐसा है चिच्चा हजरत, रिश्ते घर बैठे आए तो मैं क्या करूं। एक और नज़्म है साहब, दकनी में एक महावेरा बहुत मशहूर है, पानी छिड़कना है, पहले होता यूं था, अब हो नहीं रहा है। जब किसी घर बच्चा होता तो घर की बड़ी बूढ़ियां बच्चे को नहलाने से पहले थोड़ा सा पानी पहले उसकी पीठ पर छिड़कती थी, तो उससे मुराद ये था उस बड़ी बी के जो किरदार है उसमें आ जाते हैं। मैंने उस किरदार में, यानी कई एक किरदार को अलग अलग मैंने करते हुए कुछ किरदारों की मैंने पेश करने की कोशिश की है। अब मुलाजा हो, बोल रे राजा हिंदुस्तानी, बोल रे राजा हिंदुस्तानी, तुझे कौन छिनकी रे पानी, तुझे कौन छिनकी रे पानी, दाया आया।

रे पानी बन ला जाओ। जामू खोलना है नहीं खोलता, झूठ को सच से ज्यादा तोलता, मिश्री मिला को एलवा घोलता। जामू खोलना है नहीं खोलता, झूठ को सच से ज्यादा तोलता, मिश्री घुला को एलवा घोलता। हीरो या ड्राकुला सानी, तुझे कौन जिंदगी रे पानी, तुझे कौन जिंदगी रे पानी। सोच है तेरी हिटलर जैसी,

मेरे पानी उजला है पैरा हन तेरा लेकिन काला है मन तेरा साजिश तेरी साधन तेरा उजला है पैरा हन तेरा लेकिन काला है मन तेरा साजिश तेरी साधन तेरा लूट मार है या सुल्तानी तुझे कौन जिनकी रे पानी तुझे कौन जिनकी रे पानी। खास बंगला साहब शैतान की संगत में पड़को मुलका मुलका फिरता उड़को तफरियां करता सबसे बड़को।

0: FM Rainbow 101.9।
1: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा, हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही, कंपनियां खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोड, फ्लाईओवर और ब्रिज बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियां भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रहे नहीं। चाला ना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेको बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां न को भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियां चलाओ।
2: जी हाँ दोस्तों, ट्रैफिक रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम खुद भी महफूज रहेंगे और दूसरों को भी महफूज बना पाएंगे। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि ये पूरा वीक जो है नेशनल न्यूट्रिशन वीक चल रहा है। न्यूट्रिशन वीक के मौके पर आज हम बात करेंगे इस पर, लेकिन आपको पहले ये बता दें कि प्रोग्राम में अब वक्त हो चुका है नगमों के सफ़र पर रवाना होने का। मेरी मुराद है प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा का, जिसमें हम आपको सुनाएंगे खूबसूरत और प्यार भरे नगमे, लेकिन साथ ही नगमों के बीच हम बात करेंगे न्यूट्रिशन वीक जो चल रहा है उस सिलसिले में भी कि सेहत और ग़ज़ाइयत हमारी ज़िंदगी हमारी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ वो उसका ताल्लुक जो है हमारे जिस्म से बड़ा गहरा है। जी दोस्तों, मैं जिस मौजू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसका हमारी खुराक से, हमारी सेहत से, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत गहरा रिश्ता है। ग़ज़ाइयत की बात हो और पेट का ज़िक्र ना हो, ये तो कुछ ऐसा ही है जैसे बिरयानी हो और खुशबू का ज़िक्र ना हो। हम जो खाते हैं उसका असर सिर्फ हमारे जायके पर नहीं बल्कि हमारे पूरे जिस्म और हमारी सेहत पर पड़ता है। अच्छी और मुतवाजन ग़ज़ा यानी बैलेंस डाइट हमें सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करती है। तो आइए आज इसी सिलसिले में ज़रा अपने पेट साहब की भी खैरियत दरियाफ्त करेंगे, क्योंकि पेट भी बड़ा दिलचस्प किरदार है। खाना अच्छा हो तो सबसे पहले खुश, और खाना ज़्यादा हो जाए तो सबसे पहले नाराज़। तो आइए जानते हैं हमारे पेट के आखिर हमसे क्या शिकायतें हैं और हम उनकी उसकी शिकायतों का इजाला कैसे कर सकते हैं। लेकिन पहले आपकी शिकायतों को दूर करना चाहते हैं तो सुनिए ये प्यार भरा गीत।

दोस्तों, यह आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में सुन रहे हैं खूबसूरत, दिलकश और प्यार भरे नगमे। अभी आपने फिल्म महबूब से किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत सुना। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक चल रहा है, यानी 1 सितंबर से 7 सितंबर तक, तो हम नगमों के बीच में बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन के मामले में पेट का क्या रोल है और क्या किरदार है।

तो जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि पेट दरअसल हमारी सेहत का असली निगहबान है। कहते हैं कि इंसान के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, लेकिन आजकल तो मामला कुछ यूं है कि दिल, दिमाग, जुबान और पेट सब मिलकर इंसान को खाने पर मजबूर करते हैं। सुबह आँख खुलते ही बाज़ लोगों का पहला सवाल होता है, नाश्ता क्या है? नाश्ता अभी हुआ नहीं कि दोपहर के खाने की फिक्र शुरू हो जाती है। दोपहर का खाना खाया नहीं कि शाम की चाय के साथ क्या होगा, इसका मंसूबा बनने लगता है। और रात को खाना खाने के बाद कहते हैं, बस अब कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन 10 मिनट बाद ही फ्रिज खुलने की आवाज़ आती है, तो आप समझ ही गए होंगे कि फ्रिज क्यों खोला गया होगा। तो दोस्तों, पेट की मुख्तलिफ कैफियत पे और न्यूट्रिशन के मामले पे जो पेट का किरदार है, उसका रोल है, उस पे हमारी बातचीत जारी रहेगी। मगर पहले सुनते हैं ये दिलकश गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में खूबसूरत फिल्मी नगमे। दोस्तों, अभी जो गीत आपने सुना फिल्म कभी कभी से सुना और जिसे गाया था लता मंगेशकर और मुकेश कुमार ने। दोस्तों, आज गीत सुरीले गाते जा में हम बात कर रहे हैं नगमों के बीच बीच में न्यूट्रिशन वीक के हवाले से, और न्यूट्रिशन वीक के हवाले से हमारी बात हो रही है ग़ज़ाइयत या सेहत में पेट का क्या किरदार होता है। तो पेट भी बड़ा अजीब है, जब भरा हुआ हो तो कहता है बस भाई अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है, और जब सामने बिरयानी कबाब समोसे या गरम गरम पकौड़े आ जाएं तो अचानक पेट के सारे रूल टूट जाते हैं। हमें से बहुत से लोग पेट को सिर्फ खाना रखने की अलमारी समझते हैं, हालांकि पेट हमारा पूरा निज़ाम हाजमा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है, हमारी सेहत में बहुत अहम किरदार अदा करता है। हम जो कुछ खाते हैं वो सिर्फ पेट ही में नहीं रहता, खुराक हज़म होने के बाद उसके ग़ज़ाई अज्ज़ा जिस्म को तवानाई देते हैं, जिस्म के नशोनुमा और मरम्मत में मदद करते हैं। यानी हम जो खाते हैं इसका असर सिर्फ हमारे पेट पर नहीं बल्कि हमारी पूरी सेहत पर पड़ता है। तो दोस्तों, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और सुनिए माजी के दरीचों में झांकने पर मजबूर कर देने वाला ये नगमा।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में सुन रहे हैं प्यार भरे नगमे। और हम इन नगमों के बीच में बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन वीक के बारे में भी, और न्यूट्रिशन और पेट का क्या रिश्ता है उसके बारे में भी। दोस्तों, पेट का मामला भी अजीब है। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि इंसान की उम्र बढ़ती है, तजुर्बा बढ़ता है, जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं और बाज़ औक़ात इन सब के साथ पेट भी बढ़ने लगता है। और फिर यार दोस्त कहने लगते हैं, अरे भाई, अब तुमसे गला मिलना भी मुश्किल हो चुका है क्योंकि पेट इतना बढ़ा हुआ है कि गले तक पहुँचने में मुझे बड़ी दुश्वारी पेश आ रही है। वैसे इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ऐसे लोग जो ज़बरदस्ती गले पड़ जाते हैं, पेट उनको दूर रखने में मदद करता है। लेकिन सच ये है कि पेट निकलना सिर्फ मजाक की बात नहीं, कभी हमारी खुराक, कभी वर्जिश की कमी, कभी बैठे रहने की आदत और कभी उम्र के साथ जिस्म में आने वाली तब्दीलियां इसकी वजह बन सकती हैं। तो आइए संजीदगी और मजाक के बीच आपको सुनाते हैं ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का सफ़र यहीं ख़त्म होता है और अब पेश है पयाम शब। तहरीर व पेशकश है जनाब जैदी साहब की। लीजिए, समाप्त कीजिए।

0: कुछ इतनी रोशनी में थे चेहरों के आईने, दिल उसको ढूंढता था जिसे जानता न था। जिंदगी में हर चमकती हुई चीज हकीकत नहीं होती, इंसान अक्सर खूबसूरत चेहरों, जाहिरी कामयाबियों और दुनिया की चकाचौंध में गुम हो जाता है, लेकिन दिल को हकीकी सुकून सिर्फ सच्चाई, इखलास, मोहब्बत और अल्लाह की याद से मिलता है। इसीलिए जाहिरी हुस्न से मुतासिर होने के बजाय बातिन की पाकीजगी और किरदार की खूबसूरती को तलाश करना चाहिए। जाहिरी चमक दमक हमेशा हकीकत की आईनादार नहीं होती।
1: दोस्तों, इसी खूबसूरत पैगाम के साथ नए रंग इख्तिताम पजीर होता है। अगली बज़ में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख दा वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री

0: दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर सफलतापूर्वक वार्ता पूरी होने का स्वागत किया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव

0: हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
1: वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा सीईओ बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, एआई आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रांकेन ने भी दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं हो सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉ जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का स्वागत किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4,216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए आज 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में हांगकांग के सामने 194 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgian counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space and advanced technologies. India and Belgium today exchanged several agreements including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes including cybercrime and diplomatic training. In his press statement, Prime Minister Modi emphasised that India's economy has maintained its momentum even in this challenging environment. He said in the last quarter, India recorded a growth of 7.8%. He further said that today, India's growth story is becoming a source of confidence and new opportunities for the world. He highlighted that the scope of bilateral cooperation has expanded beyond traditional sectors to reach strategic areas such as defense and clean energy.

0: Hello and good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amrish Saxena.
1: Namaskar. श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं. स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन. पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद अमरीश जी.
1: आइए नजर डालते हैं सबसे पहले मुख्य आर्थिक समाचारों पर.
0: थैंक यू अमरीश. Benchmark domestic indices extend losing streak. Sensex falls over 400 points. Nifty settles below 23,900. India and Belgium agree to double the bilateral trade in next five years. Also discuss expanding cooperation.
1: और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों के मुख्य सूचकांक लगातार चौथे दिन आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 417 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 41 अंक यानी 0.2% की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा.

0: इससे पहले विदेशी मुद्रा बाजार में मजबूत प्रवाह से सकारात्मक धारणा के चलते बाजार बढ़त के साथ खुले। हालांकि कारोबार के दूसरे हिस्से में बाजार शुरुआती बढ़त को कायम नहीं रख सके। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और वैश्विक बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के कारण निवेशक सतर्क रहे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में प्रमुख सूचकांकों की तुलना में मजबूती देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक में 0.4% और निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.2% की तेजी दर्ज की गई।
1: Benchmark domestic equity indices declined for the fourth consecutive session today. The Sensex shed 417 points or over 0.5% to close at 76,153. The Nifty fell 41 points or 0.2% to settle at 23,873. Earlier, the markets opened on a higher note amid positive sentiment, supported by strong foreign exchange inflows. However, markets failed to hold their initial gains during the second half of the session as elevated crude oil prices and global yields kept investors cautious. On the other hand, the broader market at the National Stock Exchange showed resilience. The Nifty Mid-Cap 100 index rose 0.4%, while the Nifty Small-Cap 100 index jumped 1.2%.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में टाइटन 2.2%, ट्रेंट 1.9% और आईटीसी 1.6% नीचे रहे। दूसरी ओर एक्सिस बैंक में 0.9%, अडानी पोर्ट्स में 0.8% और एशियन पेंट्स में 0.5% की बढ़त दर्ज की गई।
1: In the sectoral indices on the BSE, 17 out of 28 sectors edged upward. Among the top performers, realty rose 2.4%, housing finance and capital goods gained around 1%, and mid-small private banks added 0.9%. In contrast, focused IT and IT declined 1%. Consumer durables fell 0.6% and auto lost 0.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,545 companies advanced, shares of 1,778 companies declined, and shares of 223 companies remained unchanged.
0: और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94.49 रुपए पर बंद हुआ। पुनीत जी, जैसा बाजार का हाल हम देख रहे हैं कि लगातार चौथे दिन भी गिरावट दर्ज की गई है, कौन से आपको ऐसे खास कारण लगते हैं जिसकी वजह से बाजार बार बार कोशिश करता है लेकिन फिर कहीं फिसल जाता है?
2: तो अमरीश जी, आज के बाजार की खास बात है कि जो हेडलाइन नंबर्स हैं यानी इंडेक्स को यदि हम देखें तो वहां पर सेंसेक्स में काफी भारी गिरावट है लेकिन निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं थी, और यदि हम मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को देखें तो वहां पर हमने अच्छी बढ़त देखी है। स्मॉल कैप में तो 1% इंडेक्स में बढ़त देखी, तो ये काफी मिला जुला सा बाजार है और ये कहना मुश्किल है कि ये बाजार में इनहेरेंट मंदी थी, जबकि एडवांस डिक्लाइन में भी हम देखते हैं एडवांसिंग स्टॉक्स काफी अच्छे थे। तो हेडलाइन नंबर्स तो हमें बता रहे हैं कि थोड़ी कमजोरी है, लेकिन अगर व्यापक बाजार को देखता हूं, ब्रॉडर मार्केट को देखता हूं, तो मुझे उतनी कमजोरी नहीं लगती। दूसरा ये मैं कहूंगा कि जो भारतीय बाजारों के जो इंटरनल फंडामेंटल्स हैं, खासतौर से दो बड़ी बात मैं कहूंगा। पहली बात, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, FIIs की जो डेटा हमारे सामने आना शुरू हुआ है वो बहुत अरसे के बाद पॉजिटिव आना शुरू हुआ है। थोड़ी बाइंग शुरू हुई है, बहुत एग्रेसिव बाइंग नहीं है, बहुत बड़ी बाइंग नहीं है, लेकिन सेलिंग नहीं है, सबसे बड़ी बात। और दूसरा कि मामूली हम देखते हैं बाइंग हो रही है, ये एक अच्छा संकेत है बाजारों के लिए। और दूसरा, जो FCNRB जो डिपॉजिट स्कीम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाया था ये सोचकर कि हमें अपने जो मजबूत जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको और मजबूत करना है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो चौंकाने वाली है। 127 बिलियन डॉलर्स, पहले अनुमान आया था 20 बिलियन डॉलर का, उसके बाद बहुत ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट आए थे 50 बिलियन डॉलर के, और उसके सामने जो परफॉर्मेंस आई है, और वो भी जब ये स्कीम एक महीने पहले बंद कर दी गई। एक्चुअली ये स्कीम 30 सितंबर तक चलनी थी लेकिन इतने ज्यादा फॉरेन फ्लोज थे कि RBI को वो स्कीम एक महीने पहले बंद करनी पड़ी। उसके बावजूद 127 बिलियन डॉलर जो हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा है वो भारत में आए, तो ये कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं और मुझे लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में हमको

0: down, and I think the war sooner or later comes to an end. I think we'll do well.
1: Right.
2: और चलते हैं अगली खबर की ओर. भारत और बेल्जियम के बीच आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा भविष्य और भरोसेमंद सप्लाई चेन दोनों देशों की साझा प्राथमिकताएं हैं. उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में आज हुए समझौता ज्ञापन से आपसी सहयोग की निरंतरता को नई गति मिलेगी.
3: क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है. सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है. इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे. बेल्जियम की कंपनीज के लिए हमने भारत में इन्वेस्टमेंट फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म का गठन किया है. हमने इंडिया बेल्जियम बिजनेस फोरम को एक रेगुलर मैकेनिज्म बनाने का निर्णय लिया है. हम दोनों देशों की फाइनेंशियल, फिनटेक और रेगुलेटरी संस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ाएंगे और इन सभी पहलों से हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे.
2: और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने अपने वक्तव्य में भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया. पुनीत जी, बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं भारत और बेल्जियम के बीच में, और बेल्जियम दुनिया की 24वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. और अगर इसको हम इस नजरिए से देखें कि भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है, तो इस इन समझौते के क्या मायने?
0: देखिए, भारत ने, जैसे आपने कहा कि भारत अपना जो ट्रेड बास्केट है वो एक्सपैंड कर रहा है बहुत तेजी से. तो एक तरफ हम देखते हैं कि

0: की दिशा में देशव्यापी और समग्र प्रयास करने का आह्वान किया। तो पुनीत जी, जैसा आप अभी जिक्र ही कर रहे थे कि जो मुक्त व्यापार समझौते हैं, इनके माध्यम से भारत अपने व्यापार को काफी विस्तार दे रहा है, और जो अभी हमारी जीडीपी की फिगर्स आई हैं उसमें छोटे और मध्यम उद्योगों की भूमिका पर प्रकाश डाला पीयूष गोयल जी ने, आप इसमें और क्या जोड़ना चाहेंगे?
1: देखिए, जो भारत को अपनी जगह बनानी है अगर इंटरनेशनल ट्रेड में, हमारा अभी भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत कम है, करीब करीब 2% से भी कम हमारा जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में, और वो हमें 5% का हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने कई बार ये बात कही है, और मुझे लगता है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एक जो कॉम्प्लेसेंसी थी, एक हम बिल्कुल बैठे थे आराम से कि देखिए कोई बात नहीं, ट्रेड हमारा एक धरे पे चला आ रहा था पिछले 50-60-70 वर्षों से, वो एक शेकअप हुआ है। और इसलिए ये जो बास्केट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खास तौर से मैं कहूंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और सच बताऊं आपको, इसका असर आपको 5 वर्ष के बाद मालूम होगा। ये अभी ये एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, इसका असर अगले 6 महीने में या 1 साल में आप नहीं देखेंगे। जो नंबर्स हैं उसमें 2 से 3 वर्ष 4 वर्ष लगेंगे, फिर आप इसका असर देखिएगा।
0: और अभी तो जैसा गोयल जी ने कहा है कि कनाडा, मेक्सिको, चिली और तमाम और देशों के साथ भी भारत इस तरह के समझौते करने वाला है।
1: 50 ऐसे FTAs इन द वर्क्स हैं भारत के लिए, और एक बहुत बड़ा एक नंबर है। देखिए, भारत जैसी अर्थव्यवस्था ही अफोर्ड कर सकती है, छोटे देश तो कोई ऐसा एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। तो आज हमारी अर्थव्यवस्था इस पोजीशन में है कि हम ऐसे एग्रीमेंट्स साइन कर सकते हैं, ये भी एक उपलब्धि है।
2: लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी टुडे एम्फसाइज्ड दैट इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बिकम द वर्ल्ड्स नंबर वन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ड्रिवन बाय इनोवेशन, quality and competitive pricing. Addressing the 66th annual convention of Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM, in New Delhi, Mr. Gadkari said the sector, currently valued at over 22.75 lakh crore rupees, contributes nearly 15% of the country's GST collections and supports around 4 crore direct and indirect jobs. He highlighted that India's automobile exports grew by 24% during 25-26. The union minister also expressed confidence that the industry's contribution to the country's economic growth will continue to expand. Puneet, you know, like I just read that the auto sector is really very, very important for us. It contributes to our GDP in a very big way. The exports have grown by 24% in 25-26. What is the way forward? What are the areas where we need to work in this sector?
1: So, Anubhav, like you said, I think if for any country, any economy, automotive sector is central to growth, because it is not only the direct taxes or the employment that it provides, the indirect mobility, the indirect momentum it provides to the economy. So unless the transportation sector grows, you can't have an economy which is growing. So clearly it is that important. However, in India, this industry is transforming because of the way the fuel sector or the energy sector is transforming. So now you have a whole spectrum of vehicles, from electric vehicles to hybrids to ethanol driven to mixed fuel. I think that is the way forward. The industry has to adapt to these new technologies in terms of fuel, in terms of mobility, and that is how we can grow. Also, if you look at exports, if you look at new technologies, I think innovation in automotive sector will be the way forward for us.
2: So R&D is one area where we need to really work.
1: Absolutely. And I know personally, I know a lot of people who are working in this area, and innovation and technology and research is the heart of this. If we don't do it, we will lag behind for sure. Right.
0: और चलते हैं एशिया के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। आज एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 0.3% बढ़ा, जबकि जापान का निकेई 225 0.2% गिरा। पुनीत जी, आप क्या कहेंगे आज के बाजारों की परफॉर्मेंस के बारे में?
1: देखिए, एशिया यूरोपीय बाजारों में हमने देखा है कि काफी वॉलिटिलिटी बहुत रही है पीछे, खासतौर से सेमीकंडक्टर सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि स्टॉक्स की बहुत ज्यादा वेटेज है कोरिया में, जापान में, ताइवान में, तो वहां पर काफी वॉलिटाइल हो रहा है। और अमेरिका में भी थोड़ा टेक्नोलॉजी सेक्टर के शेयरों में गिरावट हमने देखी है पिछले दिनों, तो ये एक रिस्क फैक्टर रहा है इकोनॉमीज के लिए। पर मुझे लगता है कि गिवन द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, ये वॉलिटिलिटी एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है। आप देखेंगे कभी ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, और इसके मुकाबले भारत तो काफी स्टेबल है।
2: Let's move on to commodities. Global crude oil prices erased earlier losses and hovered near 6-week highs after fresh U.S. strikes on Iran.

0: and renewed Israeli threats against Tehran heightened concerns about supply disruptions. Brent crude was trading 1.6% up at $97.17 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was also trading 2.2% higher at $93 per barrel when reports last came in.
1: और सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1.8% बढ़कर 153,941 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 1.8% बढ़कर 232,533 रुपए प्रति किलोग्राम थी। पुनीत जी, आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? एक बार फिर से हमें तेजी दिखाई दे रही है सोने और चांदी में आज।
2: अमरीश जी, देखिए जैसा शेयर मार्केट में तेजी मंदी चल रही है, काफी वॉलिटिलिटी चल रही है, ऐसे ही करेंसी मार्केट्स में यील्ड में हम देख रहे हैं, वैसा ही माहौल कुछ सोने चांदी के बाजारों में लग रहा है। काफी वॉलिटाइल है, परसों बाजार काफी जोर के गिरे थे, फिर वहां पर फिर बढ़त आई। ये भी न्यूज ड्रिवन है, सेंटिमेंट ड्रिवन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी ये माहौल रहेगा। तो पूरा एक वॉलिटिलिटी का माहौल या इंस्टेबिलिटी का माहौल मार्केट्स के अंदर और इकोनॉमी में भी चल रहा है और उसी का ही रिफ्लेक्शन है। बट देखिए, नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तेजी है, बहुत मंदी है, वो 1-2% के रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऐसा ही रहेगा शायद।
0: अ वेरी क्विक कमेंट फ्रॉम यू पुनीत, यू नो द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, दे वी कैन लाइक वी सॉ दैट every day it's a you know volatility, but given the fact that we were earlier discussing our foreign exchange reserves are very comfortable, so it's a good news for us given the way the oil prices are moving.
2: So Anubha, oil prices of course are a matter of concern and it really hurts the Indian economy, no doubt about it. We wish it were lower. However, it is very political right now, right. And I don't think this is going to sustain. So this may be a short-term challenge for us, but longer-term, I think we'll be in a happy place.
1: पुनीत जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद अमरीश जी।
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices extend losing streak. Sensex falls over 400 points. Nifty settles below 23,900. India and Belgium agree to double the bilateral trade in next 5 years. Also discuss expanding cooperation in areas including semiconductors and critical minerals, among others. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक दा वेवर से कल नई दिल्ली

0: द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने और बनाने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोलमेज बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, एआई आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पात्र संस्थानों से विश्वास 2026 योजना के तहत लंबे समय से लंबित ईपीएफ बकाया विवादों को कम दर पर निपटाने की अपील की है। यह एक मुश्त निपटान योजना है जिसमें नियोक्ता कम जुर्माना देकर पुराने विवादों का समाधान कर सकते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 28 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी और इसकी अंतिम तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकारी ई मार्केटप्लेस और टेक्सटाइल कमेटी ने पुनर्चक्रित और दोबारा इस्तेमाल किए गए कपड़ा उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के तहत कपड़ा कचरे, कतरनों और पुराने कपड़ों से बने उत्पादों को सरकारी ई मार्केटप्लेस के जरिए सरकारी खरीदारों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स स्मार्ट स्पोर्ट्स स्पेशलिटी अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि नए भवन से सेवाओं का विस्तार होगा और अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 64 गेंदों में 124 रन बनाए। भारत ने अपने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया था। देशभर में आज हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment, and economic

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में पहला गीत फिल्म अमर प्रेम से, आवाज है लता मंगेशकर की, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयति। कहते हैं कि आसमान में टिमटिमाते जो तारे होते हैं उनकी भी अपनी एक भाषा होती है और वो भाषा ऐसी होती है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे आसमान में टिमटिमाते तारों को तो आपको ऐसा लगेगा कि वो तारे कोई संदेश लिख रहे हैं। दूर कहीं बादल भी अपनी धीमी कहानी कहता रहता है और तारे लिखते रहते हैं। हवा

संगीत के हर सुर में जैसे दिल के पास आने की बात है। रात की ये घड़ी बता रही है कि ये जो पल है, ये पल अपने आप में कितना खास है। ये जो गीत आप सुन रहे हैं, हर अगला गीत ये हमें बताकर जाता है कि आने वाला हर एक पल बहुत खूबसूरत होगा। और अगर हम अपनी दुनिया में कहीं किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, बहुत गुम हैं, तो ये वो पहर है जो हमें खुद से मिलने का मौका देती है। तो भूल जाइए उन सारी बातों को कुछ देर के लिए, और आइए सुनते हैं एक और गीत, सुंदर सा आप सभी के लिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला गीत, फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली, आवाज है लता मंगेशकर की।

जब दिन अपने सारे रंग समेटकर दूर चला जाता है, रात का आकाश नई तस्वीर बनाता है। कहीं नींद पलकों पर धीरे धीरे उतरती है, कहीं कोई धुन मन के किसी कोने में ठहरती है। यही वो समय है, ये रात का ये पहर, जब यादें बिना बुलाए चली आती हैं और कुछ पुरानी धुनें चेहरे पर मुस्कान लेकर आती हैं। तो आइए इस पहर को संगीत की नरम रोशनी में सजाएं और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है प्रेम गीत, आवाज है अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती।

दिन का उजाला जैसे जैसे घटते घटते या यूं कहें कि ढलते ढलते रात की ड्योढ़ी पर दस्तक देता है, वैसे ही रात एक अलग कहानी लिखना शुरू कर देती है। रात की स्याही में डूबकर शहर भी अपना नाम लिखना शुरू कर देता है। दिन भर का किस्सा धीरे धीरे मिटने लग जाता है। दुकानों के जो शटर होते हैं वो गिरने लग जाते हैं। सुनसान से रस्ते और दूर जाती गाड़ी के धुंधले से उजाले। रात के इस पहर की भी अपनी एक तहजीब होती है। हर आवाज यहां कुछ धीमी पर करीब महसूस होती है। और इस नर्म लय में जब हम अपने मन की आवाज को सुनते हैं तो हम खुद को भी खुद के थोड़ा और करीब पाते हैं। ऐसी ही कुछ और बातें करेंगे। फिलहाल सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है दो दिल, आवाज है आरती मुखर्जी और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं आपके एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख दा वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछले तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया। वित्त मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉ. जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में और छोटे मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार, नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, एआई और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि हरित नौवहन की दिशा में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होगा। श्री सोनोवाल ने कल गुरुग्राम के ऊर्जा और संसाधन संस्थान के ग्वाल पहाड़ी परिसर का दौरा किया और हरित नौवहन से जुड़ी विभिन्न पहलों की समीक्षा की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद

0: निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की चार किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स भेजी जाएंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इससे त्रिपुरा के किसानों को नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेंगे और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में राजघाट समाधि स्थित समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राजघाट स्मारक के रखरखाव, साफ सफाई और प्रबंधन की समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया है कि गृह मंत्रालय ने नेपाल में लापता लोगों की पहचान के लिए DNA जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के फाइनल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर और 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। देशभर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव का माहौल है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart Bart De Wever welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space and advanced technologies. India and Belgium exchanged several agreements including letter of intent on defense cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes including cybercrime and diplomatic training. In his press statement yesterday, Prime Minister Modi emphasized that India's economy has maintained its momentum even in this challenging environment. He said in the last quarter, India recorded a growth of 7.8%. He further said that today, India's growth story is becoming a source of confidence and new opportunities for the world. Home Affairs Ministry will make available the services of Central Forensic Science Laboratories, State Forensic Science Laboratories and National Forensic Sciences University Laboratories in India for DNA profiling of first-degree biological relatives of persons who remain missing following the flash flood in Nepal. External Affairs Ministry said in a statement that first-degree biological relatives residing in India, fathers, mother, son, daughter or sibling may have their biological samples collected and DNA profiles prepared at certain facilities. As advised by the Nepal police, autosomal STR DNA profiling may be undertaken for the purpose of identification subject to the technical requirements communicated by the Nepali authorities. The helpline number in this regard is +977 9841 616095. The DNA profiles, along with the preliminary information required by the Nepali authorities, may be sent by email to dnacodis@nepalpolice.gov.np for comparison with DNA profiles obtained from unidentified mortal remains. For facilitation and coordination by the Embassy of India, Kathmandu, a copy of the DNA profile may also be sent to EOI.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में पहला गीत आवाज है सुमन कल्याणपुर और मुकेश की। फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। फिर एक सांझ हमारे हिस्से में आकर धीरे धीरे विदा हो गई। आंखों के भीतर न जाने कितनी ऋतुएं भीगती रहीं, किंतु अधरों ने बस इतना कहा, फिर मिलेंगे। कितना छोटा सा वाक्य था वह, पर उसके भीतर कितनी दूरियों के पार जाने की एक पूरी शक्ति छिपी थी। एक राह ने मुझे मेरी दिशा दे दी, एक राह ने मुझे मेरी दिशा दे दी, दूसरी ने उसे बुला लिया। नगर अलग थे, आकाश एक था, और उस एक आकाश के नीचे हमने अपने हिस्से की प्रतीक्षा बांट ली, और उस एक आकाश के नीचे हमने अपने हिस्से की प्रतीक्षा बांट ली।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और आपके साथ हूं मैं जयती। किसने छेड़ा मेरे अंतर के अनलिखे अक्षरों को, किसने छेड़ा मेरे अंतर के अनलिखे अक्षरों को कि बिना किसी निमंत्रण के भावों की धरती पर मधुर लहरियां उतरने लगी। मैं तो अपने ही दिनों की धूल समेटे सामान्य पथ पर चल रही थी, मैं तो अपने ही दिनों की धूल समेटे सामान्य पथ पर चल रही थी, किंतु किसी अदृश्य स्पर्श ने सांसों के निर्जन आंगन में एक ऐसी रचना लिख दी जिसका अर्थ केवल हृदय पढ़ सकता है। न यह आकर्षण था, न किसी अभिलाषा का विस्तार, यह तो मानो बहुत दूर छूट गई अपनी ही किसी पहचान का अचानक लौट आना था। मेरे भीतर कितने ही स्वर वर्षों से बिना उच्चारण के ठहरे थे, वे किसी वाद्य की प्रतीक्षा में नहीं थे, एक सच्ची अनुभूति के प्रतीक्षा में थे। ज्यों ही तुम्हारे स्मरण की हल्की रेखा मन की धरती पर उतरी, ज्यों ही तुम्हारे स्मरण की हल्की रेखा मन की धरती पर उतरी, हर निष्प्रभ कोना अपने आप अर्थ से भर गया, अपने आप अर्थ से भर गया। किसने छेड़ा मेरे अंतर के अनलिखे अक्षरों को कि बिना किसी निमंत्रण के भावों की धरती पर मधुर लहरियां उतरने लगी।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत फिल्म का नाम है मिस मेरी, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। आपने कभी झमाझम बरसती बारिश को ध्यान से सुना है? बारिश जब होती है ना, तो बिल्कुल वो लाइन जो है सच साबित हो जाती है कि फिराक की बारिश मलाल का मौसम, फिराक की बारिश मलाल का मौसम, हमारे शहर में उतरा कमाल का मौसम। जनाब, बारिश हर शहर को कमाल कर देती है। बरसते बारिश में कभी अपने शहर को ध्यान से देखिएगा, रात की आवाज बदल जाती है, छज्जे से गिरती धार कोई पुराना सुर छेड़ देती है, भीगी सड़क पर रोशनी की परछाइयां बहती हैं, और बंद कमरों में तो न जाने कितनी स्मृतियां सांस लेने लग जाती हैं। ऐसे मौसम में जब कोई रात में चाय का एक गरम कप पकड़कर साथ बैठ जाए, कोई अपना पसंदीदा गीत सुनने लग जाए, किसी को घर की याद सताने लग जाए, और किसी को अपने पुराने शहर लौट जाने का मन करने लग जाए, तो कहते हैं कि दिल उस वक्त अपनी सच्ची कहानी सुना रहा होता है, यानी आपसे खुद की बात कह रहा होता है। बारिश का मौसम शायद इसलिए भी प्यारा है कि यह बिना कुछ कहे बहुत कुछ याद दिला देता है। बूंदों की धुन जो है वो हमारे मन की धुन के साथ कदम मिलाने लग जाती है। बातें और भी हैं बहुत सारी, फिलहाल इस रात को थोड़ा और खूबसूरत बनाते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है कामचोर, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत, फिर करेंगे और बहुत सारी बातें। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

पता चला एक बार फिर से आपको याद दिलाने का कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्क दा वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार, नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, एआई और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की चार किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स के लिए है। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। कभी आपने गौर किया है, एक गीत जब खत्म हो जाती है तो उस गीत के खत्म होने के बाद भी उसकी जो धुन है बहुत देर तक भीतर चलती रहती है। कुछ गीत सुनाई नहीं देते, याद रह जाती हैं। उनसे जुड़े चेहरे, रास्ते, मौसम अचानक फिर से आंखों के सामने आने लग जाते हैं। शायद संगीत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो बीते हुए पल को फिर से जीने का एहसास देता है। और ये जो गीत होते हैं ना, जो हम सुनते हैं, अपने कुछ मनपसंद गीतों की लिस्ट बनाकर रखते हैं, ये गीत सिर्फ गीत नहीं होते, वे हमारे मन के, यादों के दरवाजे भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता खोलने लग जाते हैं। कोई भी गीत हो, उसकी धुन आपकी हो सकती है, हमारी हो सकती है, और हमारे और आपके धुन के होने का मतलब कि वो गीत जो हमें बहुत पीछे ले जाए, यादों के पुराने मौसम को फिर से दोहराने का मौका दे, ऐसी धुन आपकी भी हो सकती है और हमारी भी हो सकती है। किसी की मुस्कुराहट का कारण हो सकती है, किसी की याद का कारण बन सकती है। तो सुनते हैं एक और गीत और फिर करेंगे ऐसी ही कुछ और बातें। और अब जो गीत हम आपको सुनवाएंगे, लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम है रेशमा और सेरा।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयदी। और रात सुरमई में अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है दीवाना, आवाज है कुमार शानू और अलका याग्निक की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। रात से पूछिए तो वो दिन का हिसाब नहीं मांगती, बस अगली सुबह तक का थोड़ा समय देती है। जो अच्छा रहा उसे दिल में रखिए, और जो बिगड़ गया उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। कुछ फैसले सुबह की रोशनी में बेहतर समझ आते हैं, इसलिए हर सवाल का जवाब इसी वक्त हो जरूरी नहीं। आज बस अपने मन को थोड़ा आराम दीजिए, कुछ प्यारे गीत सुनिए, आने वाले कल के लिए थोड़ी सी जगह बचा कर रखिए, क्योंकि जिंदगी हर सुबह एक नया पन्ना लेकर आती है, और शायद अगली सुबह की कहानी आज की रात से ही शुरू हो रही हो। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है आशा।

रात गहरी है तो क्या दिल में उजाला रखिए, रात गहरी है तो क्या दिल में उजाला रखिए, नींद आए न आए कोई ख्वाब निराला रखिए, नींद आए न आए कोई ख्वाब निराला रखिए। अगला गीत फिल्म लगान से, आवाज है उदित नारायण, आशा भोसले और वैशाली की।

रात कहती है कि इस अंधेरी सी शब में रंग भरते जाइए, इस अंधेरी सी शब में रंग भरते जाइए, कोई भूला हुआ नगमा सा बिखेरते जाइए, कोई भूला हुआ नगमा सा बिखरते जाइए। वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और समाचारों के बाद अर्चित होंगे आपके साथ। फिलहाल आपको छोड़े जाते हैं फिर मिलने के वादे के साथ और एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है संजोग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंट्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने और छोटे मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार, नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, एआई और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्यों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की चार किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। वहीं 4,216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए 2 और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया है कि गृह मंत्रालय नेपाल में लापता लोगों की पहचान के लिए डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। 3:10 हो चुके हैं और रोजाना की तरह आप सुनिए कार्यक्रम हमराही।

आज के इस कार्यक्रम हमराही में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम मोहम्मद रफी जी की आवाज में बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: बहुत मुश्किल से करता हूं तेरी यादों का कारोबार, बहुत मुश्किल से करता हूं तेरी यादों का कारोबार। मुनाफा कम है पर गुजारा हो ही जाता है। 3:17 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनूं।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी?
2: तुमसे नहीं,

0: मैंने भी ख्वाब सा देखा है।
1: कहो, तुम भी कहो।
0: खुद पे इतरा तो न जाओगे?
1: नहीं, खुद पे नहीं।

अकेली रात बोलती तो बहुत है, अकेली रात बोलती तो बहुत है, लेकिन सुन सिर्फ वही सकता है जो खुद भी अकेला हो। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 3:24 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

तुमने कुछ ना कहा, तुमने कुछ ना कहा और ना कुछ सुना हमने, तुमने कुछ ना कहा और ना कुछ सुना हमने, इशारों इशारों में ही सारी बात हो गई। वक्त का दोनों को ही पता ना चला, वक्त का दोनों को ही पता ना चला, देखते ही देखते सारी रात हो गई। 3:37 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

जलाकर हसरत की राह पर, जलाकर हसरत की राह पर चिराग आरजू के, हम तन्हा रातों में आज भी सिर्फ तेरे मिलने का इंतजार करते हैं।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, लिखा है तेरी आंखों में। महफिल में कुछ तो सुनाना पड़ता है, महफिल में कुछ तो सुनाना पड़ता है, गम छुपा कर अक्सर मुस्कुराना पड़ता है। कभी हम भी थे उनके अजीज, कभी हम भी हुआ करते थे उनके अजीज, आजकल उन्हें ये भी याद दिलाना पड़ता है। 3:52 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्क दा वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन का संघर्ष समाधान तेल खनिज या एल्यूमिनियम खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश और व्यापार विभाग की रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की उप सचिव एली लॉसन, जापान के विदेश मामलों के वरिष्ठ उपमंत्री हिरोयुकी नमाजू और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर शामिल हुए। इस दौरान समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी तथा मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत और वैश्विक स्तर के घटनाक्रमों पर भी विचार साझा किए। बैठक की तैयारियों के सिलसिले में अगली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। देशभर में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी को लेकर यातायात परामर्श भी जारी किया है। रोहिणी के इस्कॉन मंदिर, रामलीला ग्राउंड और जापानी पार्क में आज सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर और 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई।

0: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 4:10 हो चुके हैं और अब हमेशा की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अरुणिमा। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं फिर से आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम किशोर कुमार जी की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। फिर होंगी कुछ प्यारी प्यारी सी बातें सिर्फ और सिर्फ आपके साथ।
1: खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

हौसले बुलंद कर अपने रास्तों पर चल दीजिए, हौसले बुलंद कर अपने रास्तों पर चल दीजिए, आपका मुकाम आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। बढ़कर अकेले आप पहल कर के तो देखिए, बढ़कर अकेले आप पहल करके तो देखिए, आपको देखकर काफिला भी खुद ब खुद बन जाएगा। 4:17 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

ढूंढोगे अगर तो रास्ते मिल ही जाएंगे, ढूंढोगे अगर तो रास्ते मिल ही जाएंगे, मंजिलों की फितरत है वो खुद से चलकर कभी नहीं आती। 4:23 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

कौन पूछता है पिंजरे में बंद पक्षियों को, कौन पूछता है पिंजरे में बंद पक्षियों को, याद अक्सर वही आते हैं जो उड़ जाते हैं।

लता मंगेशकर जी की आवाज में मेरा साया साथ होगा। मंजिलों पर पहुंचने के बाद ही पता चला, मंजिलों पर पहुंचने के बाद ही पता चला कि मंजिल से अच्छा तो सफर ही था। 4:41 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

S.T. Burman was a very great master, an inspired man. ज़्यादा पिक्चर लेता नहीं था, धरती पर बैठ के कंपोज करता था. सुबह 8 बजे फ़ोन कर देता था, देव शाम को क्या कर रहे हो, आ जाओ, या मैं शाम को आ रहा हूँ. और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही सिटी में 3-3 गाने फाइनलाइज हुए हैं.

जीवन में सब कुछ हमारा सोच और विश्वास पर ही निर्भर करता है। हमारा विश्वास पहाड़ को भी खिसका सकता है, लेकिन हमारा संदेह समस्याओं का बहुत बड़ा पहाड़ भी लगा सकता है।

जिन्हें नींद नहीं आती, जिन्हें नींद नहीं आती, सिर्फ उन्हीं को मालूम होता है सुबह होने में कितने जमाने लगते हैं।

4:58 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अनुसार प्रक्षेपण के करीब 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।

0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल खनिज खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की उपसचिव एली लॉसन, जापान के विदेश मामलों के वरिष्ठ उपमंत्री हिरोयुकी नमाज़ू और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर शामिल हुए। इस दौरान समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी तथा मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत और वैश्विक स्तर के घटनाक्रमों पर विचार साझा किए। ये बैठक अगले क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की तैयारियों के सिलसिले में हुई। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी दी और आवश्यक निर्देश दिए। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। वहीं 4,216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। देश भर में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी को लेकर यातायात परामर्श जारी किया है। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गए। स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 64 गेंदों में 124 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India's first imaging satellite in geosynchronous orbit was successfully launched by a GSLV rocket from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in the wee hours today. After the completion of a smooth 27-hour countdown, the GSLV F-17 rocket with a 2,367 kg payload mass began its ascent on dot at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. The ISRO said the state-of-the-art Earth observation spacecraft EOS-05 successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport. The imaging satellite will provide real-time imagery and help the nation in areas including agriculture and disaster management. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services. India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart Bart De Wever welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. India and Belgium exchanged

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिलें तो खुद की मेहनत से ही मिलती हैं। 5:11 हो चुके हैं। कार्यक्रम भोज सुहानी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं एक बार फिर से आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही बेहतरीन से गीत के साथ।

ये दुनिया भी ठीक हमें वैसी ही दिखती है जैसा हम इसे देखना चाहते हैं। किसी को यहाँ पर गुलाबों में कांटे दिखाई देते हैं, तो किसी को कांटों में गुलाब।

जीवन में सब कुछ हासिल करना ही सफल जीवन की निशानी नहीं होती है। एक सफल जीवन की परिभाषा ये भी हो सकती है कि आपने पूरा जीवन कितना सुख और शांति के साथ जिया है और जी रहे हैं। क्योंकि मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने हासिल तो सब कुछ कर लिया है पर फिर भी जीवन में परेशान ही घूम रहे हैं। 5:25 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।